शुभ सवेरा, नमस्कार। ...90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज सोमवार है, विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि और शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 1ली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय 7:04:20 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आज के दिन की

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। क्यों तकता है तू आसमान को, कोई रहता है क्या आसमान में? जी हाँ, किसी ने कहा है कि क्यों निगाहें आसमान की ओर हैं, और ये वो वक्त है जबकि हर निगाह आसमान की ओर है। चाहे हम बात करें इंसानों की, चाहे हम बात करें धरती की, या हम बात करें पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की, हर आँख में इंतज़ार है बरसती हुई रिमझिम बूंदों का, तपती सुलगती गर्मी से निजात पाने का इंतज़ार। तो कुल मिलाकर इंतज़ार का ये वक्त है, बारिश का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसे हम सुनते हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्द मानसून आएगा और इस सुलगती हुई गर्मी से हम सभी को निजात देगा। वैसे श्रोताओं, इंतज़ार भी एक खूबसूरत बात है। अगर ज़िंदगी में किसी बात का इंतज़ार ना हो तो सोचिए ज़िंदगी कितनी उदासीन, कितनी नीरस महसूस होगी। हर दिन एक इंतज़ार आपको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर आपको अपनी मंजिल का इंतज़ार होता है तो आप एक दिन में बहुत से प्रयास करते हैं उस मंजिल तक पहुंचने का। तो इंतज़ार एक खूबसूरत बात है, इंतज़ार आगे बढ़ने का एक मंत्र भी है। तो मानसून के साथ साथ ज़िंदगी में किसी सपने के पूरे होने का इंतज़ार भी बरकरार रखिए, ताकि ज़िंदगी में बहुत कुछ आप करते रहें, हर दिन एक नया प्रयास करते रहें, हर दिन एक कोशिश करें कि एक कदम और अपनी मंजिल तक आप बढ़ें। तो इसी खूबसूरत से संदेश के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन क्या कुछ ख़ास हम लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं इसकी जानकारी आपको देते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि का प्रसारण होगा और फिर भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा। इसमें आज हम बात करेंगे सेठ अमरचंद बांठिया की। 8:30 बजे सुनो कहानी कार्यक्रम में सुनिएगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुस्साहस। कला कल्लोलिनी, ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे हम प्रसारित करेंगे। इसमें आज बात होगी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां की। हमारा विशेष कार्यक्रम आपके लिए होगा सुबह 9:30 बजे। इसमें आज सुनिएगा शिवभाई गुप्ता का निमाड़ी गायन। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे आजाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रफुल्ल चंद्र राय की, शब्दों के शिल्पकार। ये कार्यक्रम 11 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज आप सुनेंगे नज़ीर अकबराबादी पर केंद्रित कार्यक्रम का दूसरा भाग और 11:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। आज इसकी 78वीं कड़ी प्रसारित होगी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और आज की प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: एक सज्जन रोज शाम को बगीचे में घूमने जाते थे। एक बार रास्ते में उनके दोस्त मिल गए। वहां रुककर सज्जन व्यक्ति कुछ देर उनसे बतियाने लगे। सावन का पहला सोमवार था, इसलिए रौनक भी खूब ज्यादा थी। वहां गुब्बारे वाले, कुल्फी वाले भी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। वे सज्जन पुरुष बात खत्म करके आगे बढ़ने लगे तो पास में खड़े कुल्फी वाले ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी पैसे। सज्जन व्यक्ति हतप्रभ होकर के बोले, कैसे पैसे? उसने पास खड़े कुल्फी खाते हुए एक बालक की ओर इशारा करके कहा, आपका नाम लेकर के कुल्फी ले गया है, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। सज्जन व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वे बच्चे के पास गए और दो थप्पड़ जमाते हुए बोले, मुफ्त की कुल्फी खाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चे ने रोते हुए मासूमियत से कहा, मुफ्त की कहा, इसके बदले थप्पड़ खाने के लिए तो आपके पास खड़ा था, वरना भाग न जाता। उस बच्चे का मासूम सा जवाब सुनकर के सज्जन व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे कभी किसी मासूम को ना मारने का प्रण लिया और इसके बाद प्रायश्चित करते हुए रोज उस गरीब बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते जरूर थे।
1: जीवन सौरभ।
3: न जी भर के देखा न कुछ।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, कहते हैं वही मनुष्य जीवन में ऊपर उठ सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो आइए हम भी अपनी जड़ों की ओर चलें, वेदों उपनिषदों के ज्ञान को सुनें। कार्यक्रम का नाम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 151 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं मित्र और मित्रा वरुण, छंद है जगती।
1: मित्रम नयम शिम्या गोषु गव्यवः स्वाध्यो विदथे अप्सु जीजनन अरे जेताम रोदसी पाजसा गिरा प्रतिप्रियम यजतम जनुषामवः। पूजनीय एवं प्रीतियुक्त जिन अग्निदेव को मानव मात्र की रक्षा के लिए गौ की कामना से प्रेरित श्रेष्ठ ज्ञानियों ने मित्र के समान अपने श्रेष्ठ यज्ञीय सत्कर्मों में प्रकट किया, उनकी ध्वनि और तेजोमयी शक्ति से दिव्यलोक और पृथ्वी लोक कंपायमान होते हैं। यद्धत्यद्वाम पुरुमीडहस्य सोमिनः प्रमित्रासो न दधिरे स्वाभुवः अधक्रतुम विदतम गातुमर्चत उतश्रुतम वृषणा पस्त्यावतः। हे सामर्थ्यवान मित्र और वरुण देवो, आप दोनों के लिए मित्र के समान हितैषी ऋत्विक गणों ने अपनी सामर्थ्य से सत्तावान तथा विभिन्न सुखों के दाता सोमरस को अर्पित किया है। अतएव आप दोनों स्तोता के गुण कर्म स्वभाव को समझें तथा सद्गृहस्थ यजमान की प्रार्थना पर भी ध्यान दें। आवाम भूषण क्षितयो जन्म रोदस्योह प्रवाच्यम वृषणा दक्षसे महे यदीमृताय भरथो यदर्वते प्रहोत्रया शिम्या वीथो अध्वरम। हे शक्ति संपन्न मित्र और वरुण देवो, पृथ्वीवासी महान दक्षता की प्राप्ति के लिए द्यावा पृथ्वी से उत्पन्न आप दोनों की प्रशंसा करते हैं और स्तोत्रों से अलंकृत करते हैं, क्योंकि आप दोनों सच्चे साधक तथा दैवी नियमों के पालक को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। आप आमंत्रित करने पर तथा सत्कर्मों से आकर्षित होकर यज्ञ में उपस्थित होते हैं। प्रसा क्षिति रसुर या महि प्रिय त्रतावाना व्रतमा घोषथो बृहत युवम दिवो बृहतो दक्षमा भुवम गाम न धुर्युप युंजाथे अपह। हे बलशाली मित्रा वरुण, जो आप दोनों को विशेष प्रिय है उस भूमि का व्यापक विस्तार हो। हे यज्ञी कर्मों के पालन करता देवों, आप दोनों निर्भीकता पूर्वक महान सत्य ज्ञान का उद्घोष करें। महान दैवीय गुणों से संवर्धनार्थ आप दोनों सामर्थ्य युक्त तथा कल्याणकारी कर्मों में उसी प्रकार संलग्न हों जिस प्रकार बैल हल में जुए के साथ संलग्न रहता है। मही अत्र महिना वार मृणवथो रेण वस्तुज आ सद्मन्धेनवः स्वरन्ति ता उपरताति सूर्यमा निमृच उशस्त क्व वीरिव। हे मित्र और वरुण देवों, आप दोनों विस्तृत पृथ्वी पर अपनी प्रभाव क्षमता से धारण करने योग्य श्रेष्ठ धनों को प्रदान करते हैं तथा पवित्र गऊएं अर्थात किरणें हमें देते हैं। उषः काल में ये गऊएं आकाश मंडल पर बादलों के छा जाने पर सूर्यदेव के लिए रंभाती हैं, जैसे मनुष्य चोर को देखकर सावधानी के लिए चिल्लाते हैं। आवामृताय केशिनीर नूषत मित्र यत्र वरुण गातु मर्चतः अवत्मना स्रजतम पिन्वतम धियो युवम विप्रस्य मन्मना भिरज्यथः। हे मित्र और वरुण देवो, जहां आपकी प्रार्थनाएं गाई जाती हैं उस प्रदेश में अग्नि की ज्वालाएं यज्ञीय कार्य के लिए आप दोनों का सहयोग करती हैं। आप हमारी बौद्धिक क्षमता को पुष्ट करके सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। आप दोनों ही ज्ञान संपन्न विद्वानों के अधिपति हैं। यो वाम यज्ञैः शशमानो ह दाशति कविर होता यजति मन्म साधनः उपाह तम गच्छथो वीथो अध्वर मच्छा गिरह सुमतिम गंत मस्मयु। हे मित्र और वरुण देवों, जो विद्वान याजक प्रार्थनाएं करते हुए आप दोनों को आहुतियां प्रदान करते हैं, उन मनुष्यों के समीप जाकर आप यज्ञीय कर्मों की अभिलाषा करते हैं। अतएव आप दोनों हमारी ओर उन्मुख होकर हमारे स्तोत्रों और श्रेष्ठ भावनाओं को स्वीकार करें। युवाम यज्ञैः प्रथमा गोभिरंजत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु भरन्ति वाम मन्मना संयता गिरो दृप्यता मनसा रेव दाशाथे। हे सत्य संपन्न मित्रा वरुण देव, इंद्रियों में मन जिस प्रकार सर्वोत्तम है, उसी प्रकार देवताओं में सर्वोत्तम आप दोनों को याजकगण दुग्ध घृतादि की आहुतियों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उन्हें ऐश्वर्य संपदा प्रदान करते हैं। रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा माया भिरित ऊति माहिनम न वाम द्यावो हभिर्नोत सिंधवो न देवत्वं पणयो नानशुर मघम। हे नेतृत्व संपन्न मित्र और वरुण देवो, आप दोनों अपनी शक्तियों से सुरक्षित करते हुए हमें वैभवपूर्ण उपयोगी संपदाएं प्रदान करते हैं। आप दोनों की दैवी क्षमताओं और संपदाओं को दिव्य लोक अहोरात्र नदियां तथा पणि नामक असुरगण भी उपलब्ध नहीं कर सके।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 151 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: ये था आपको आपकी जड़ों से जोड़ता कार्यक्रम अक्षय निधि। रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में बहुत कुछ है खास आगे आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल देश के लिए।
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए इस पावन यात्रा पर हम और आप साथ साथ चलें। श्रोताओं, जब से कुदरत है, मनुष्य का अस्तित्व है, तब से ईश्वर की अनंत खोज जारी है और ये विश्वास भी कायम है कि कहीं तो कोई है जो दुनिया की बागडोर थामे हुए है, इसे गतिमान करता रहता है। ईश्वर क्या है, कहाँ मिलते हैं इसके पद चिन्ह, ये एक सनातन प्रश्न है जो हर कालखंड में मानव मन को मथता रहा है। श्रद्धा, विश्वास और तर्क की कसौटी पर मानव ने ईश्वरीय सत्ता की हर दम छानबीन की और हर बार यही निष्कर्ष सामने आया कि जर्रे जर्रे में बसते हैं भगवान।

श्रोताओं, ईश्वर प्रेम, आस्था और विश्वास का तालमेल है। वो रहम है, रहमान है, दीन बंधु है, दयानिधि है। इसलिए जब भी मन में ईश्वर की तलाश का प्रश्न उभरे तो किसी को माफ करके देखिएगा, आपको अपनी रहम में ही उस खुदा के दीदार होंगे। किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर हंसी की रंगोली सजा कर देखिए, यकीनन जगदीश्वर आपकी आंखों के सामने होंगे। उनका कोई आकार नहीं, वे कण कण में व्याप्त हैं। हर दुखियारे की हंसी में, प्रेम की तलाश में भटकते हृदयों में, स्वयं के पूर्ण होने की यात्रा कर रहे साधकों में, संगीत की झनकार में और गायन की मिठास में, हर कहीं वो ही हैं।

जीव मात्र से प्रेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर व्याप्त है। कम से कम भारतीय मनीषा इसी सिद्धांत पर विश्वास करती है और हमारी आस्था धर्मिता इसी यकीन के इर्द गिर्द बुनी गई है। पानी, हवा, आग, वृक्ष, नदी, पुष्प, हम इन सब में ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके होने पर यकीन करते हैं। हम मानते हैं कि ये संपूर्ण जगत उस विराट का ही स्वरूप है।

श्रोताओं, बहुत से लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों, रंगों और आकार में पूजते हैं। कोई मूर्ति के रूप में पूजता है तो कोई अग्नि के रूप में और कोई निराकार। कुछ लोग प्रकृति के हर कण को ईश्वर मानते हैं। दरअसल ईश्वर हमारे भाव जगत का विषय है। जैसी हमारी भावना, वैसा ही हमारा ईश्वर।

ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है और कण कण में व्याप्त है। उसकी शक्ति से ही आकाश में विस्तार है, उसकी शक्ति से ही वायु का श्वास है, उसकी शक्ति से ही सूर्य चमकता है और उसकी शक्ति से ही सभी जीवित हैं। वही जगत का सत है, वही आत्म की आत्मा है।

श्रोताओं, हमारा ईश्वर हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा का ही रूप है। उसे हम भीतर ढूंढें या बाहर जगत में, अंततः हम पाते यही हैं कि वो हर कण में शामिल है, जर्रे जर्रे में उसी का रूप है, उसी के नाम की झनकार है। तो इस संसार के कण कण में उसके दर्शन का संकल्प लिए संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। अब अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक उथल पुथल कुछ अलग रंग जमाए हुए थी। अधिकांश बड़े राजा और जमींदार अंग्रेजों से मैत्री बनाए हुए थे। अंग्रेजों को अपने दरबार में बड़े पद भी दे रखे थे। ये सैन्य सलाहकार, सेनापति और विशेष सलाहकार भी थे। अपने खर्चे पूरा करने के लिए राजाओं द्वारा गरीब जनता पर भारी कर लगाए जाते थे। गांवों से संपत्ति लूटी जाती थी या फिर उनसे वसूली जाती थी। इस मनमानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। अंग्रेज सरकार अपने खर्चे पूरे करने, युद्ध के लिए पैसा जुटाने का काम इन राजाओं को धमका कर पूरा करती थी। युद्ध के लिए कर्ज भी राजाओं और नवाबों से लिया जाता था। पर इस भीषण संतरास के बीच ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए कि समाज के संपन्न वर्ग के लोगों ने, छोटे छोटे जमींदारों ने अपनी सेना और धन खुशी खुशी 1857 के समय युद्धरत क्रांतिकारी सेना नायकों को सौंपा। ऐसे ही एक भामा शाह थे दिल्ली के रामजी दास गुड़वाला और उनसे भी आगे ग्वालियर के अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया के पूर्वज बांठिया गोत्र के आदि पुरुष श्री जगदेव पवार ने जैनाचार्य भावदेव सूरी से प्रबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार किया था। कुछ इतिहासकार विक्रम की 12वीं शताब्दी में रणथंभौर के राजा लाल सिंह पवार के पुत्रों द्वारा जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरी से प्रतिबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार कर लेने के उनके ज्येष्ठ पुत्र बंठ से बांठिया गोत्र की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ इतिहासकार माधव देव द्वारा दानवीरता की अनुकरणीय परंपरा का श्री गणेश करने के कारण बांटिया अर्थात बांठिया उपनाम की प्रसिद्धि मानते हैं। स्पष्ट है कि अमरचंद जी को दानवीरता का गुण जन्मजात ही मिला था। अमरचंद बांठिया का परिवार व्यापार हेतु सन 1835 में फलौदी में भूमि से प्रकट हुई चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा के चल समारोह में अनेक संघपतियों के परिवार के साथ बीकानेर से ग्वालियर आया और यहीं बस गया। प्रतिमा की प्रतिष्ठा ग्वालियर के हृदय स्थल सर्राफा बाजार के शिखरबंद जिनालय में संवत 1893 में हुई थी। अमरचंद के दादा का नाम खुशाल चंद और पिता का नाम अबीर चंद था। अमरचंद अपने 7 भाइयों में सबसे छोटे थे। अमरचंद बांठिया में धर्मनिष्ठा, दानशीलता, सेवा भावना, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता आदि गुण जन्मजात थे। यही कारण था कि सिंधिया राज्य के पोद्दार श्री वृद्धिचंद संचेती ने अमरचंद को ग्वालियर राज्य के प्रधान राजकोष गंगाजली के कोषालय पर सदर मुनीम बनवा दिया। उस समय सिंधिया नरेश मोती वाले राजा के नाम से जाने जाते थे। गंगाजली में अटूट धन संचय था जिसका अनुमान स्वयं सिंधिया नरेशों को भी नहीं था। विपुल धनराशि से भरे इस खजाने पर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल का कड़ा पहरा रहा करता था। कहा जाता है कि उन दिनों पीढ़ियों से ये आन चली आ रही थी कि न तो कोई राजा अपने राजकोष की संपत्ति को देख ही सकता था और न ही उसमें से कुछ निकाल ही सकता था। इसलिए गंगाजली की सदैव वृद्धि होती रहती थी। इस अकूत धन संचय को कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। अमरचंद बांठिया इस खजाने के रक्षक ही नहीं, ज्ञाता भी थे। वे चाहते तो अपने लिए मनचाही रत्न राशियां निकालकर कभी भी धन कुबेर बन सकते थे। पर बांठिया जी तो धर्म के पक्के अनुयायी थे, जो राजकोष का एक भी पैसा अपने उपयोग में लाना घोर पाप समझते थे। ईमान और कर्तव्य ही उनके लिए सर्वोपरि था।

बांठिया जी की दैनिक चर्या बड़ी ही नियमित थी। प्रातः उठकर जिनेन्द्र देव की अर्चना और यदि कोई मुनि या साधक विराजमान हो तो उनके उपदेश सुनना, समय पर कोषालय जाना, सूर्यास्त से पूर्व भोजन और रात्रि 9 बजे तक शयन उनके यांत्रिक जीवन के अंग थे। गंगा जली के खजांची पद को सुशोभित करने के कारण बांठिया जी का आत्मीय परिचय बड़े बड़े राज्याधिकारियों से हो जाना स्वाभाविक ही था। सेना के अनेक अधिकारियों का आवागमन कोषालय में प्रायः होता रहता था। बांठिया जी के सरल स्वभाव और सादगी ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। चर्चा प्रचर्चा में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों की भी चर्चा अक्सर होती थी। एक दिन एक सेनाधिकारी ने कहा, आपको भी माँ को दासता से मुक्त कराने के लिए अब मुझे लगता है कि हथियार उठा लेना चाहिए। बांठिया जी ने कहा, भाई अपनी शारीरिक विषमताओं के कारण मैं हथियार तो नहीं उठा सकता, पर समय आने पर ऐसा काम करूंगा जिससे क्रांति के पुजारियों को शक्ति मिलेगी और उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। जैसा कि सबको मालूम ही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जहां कहीं भी युद्ध छिड़ता था वे भारतीय सैनिकों को ही सबसे पहले युद्ध की आग में झोंक देते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने अमरचंद बांठिया से चर्चा में 1857 के पूर्व की एक घटना सुनाते हुए कहा, 700 बंगाली सैनिकों की एक रेजिमेंट को अंग्रेज अफसरों ने इसलिए गोलियों से भून दिया था कि उन्होंने बैलों पर चढ़कर जाने से मना कर दिया था। ज्ञातव्य है कि भारतीय संस्कृति में गाय हमारी माता है और उसके पुत्र बैल पर चढ़कर जाना पाप माना जाता है। सैनिकों ने इसी कारण बैल की पीठ पर बैठने से मना कर दिया था। ये भी ध्यातव्य है कि गाय बैल की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना करने पर हजारों निरापद सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसी ही अनेक घटनाओं को सुन सुनकर बांठिया जी का हृदय भी देश की आजादी के लिए तड़पने लगा था। उधर मुनिराज के प्रवचन में भी उन्होंने एक दिन सुना कि जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें उसी का जन्म सार्थक है, वो मरणोपरांत अमर रह सकता है। ये सुनकर बांठिया जी का निश्चय बिल्कुल दृढ़ हो गया। उन्होंने तय किया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे जो भी समर्पित करना पड़े मैं करूंगा, और ये अवसर शीघ्र ही सामने भी आ गया।

1857 की क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई, उनके सेना नायक राव साहेब और तात्या टोपे आदि क्रांतिवीर ग्वालियर के रणक्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध डटे हुए थे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों को कई महीने से वेतन नहीं मिला था और न ही राशन पानी का समुचित प्रबंध ही हो सका था। तब बांटिया जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्रांतिकारियों की मदद की। 2 जून 1858 को राव साहब ने अमरचंद बांटिया से कहा कि उन्हें सैनिकों का वेतन आदि भुगतान करना है, क्या वे इसमें सहयोग करेंगे? तत्कालीन परिस्थितियों में राजकीय कोषागार के अध्यक्ष अमरचंद बांटिया का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई की क्रांतिकारी सेनाओं के सहायतार्थ एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया जिसका सीधा सा अर्थ उनके अपने जीवन की आहुति से था। अमरचंद बांटिया ने राव साहब के साथ स्वेच्छापूर्वक सहयोग किया तथा राव साहब प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्वालियर के राजकीय कोषागार से समूची धनराशि प्राप्त करने में सफल हो सके। 5 जून 1858 के दिन राव साहब राजमहल गए तथा अमरचंद बांटिया से गंगाजली कोष की चाबियां लेकर उनका दृश्यावलोकन किया। तत्पश्चात दूसरे दिन जब राव साहब बड़े सवेरे ही राजमहल पहुंचे तो अमरचंद बांटिया उनकी आगवानी के लिए मौजूद थे। गंगाजली कोष से धनराशि लेकर क्रांतिकारी सैनिकों को 5-5 माह का वेतन वितरित किया गया। महारानी बैजाबाई की सेनाओं के संदर्भ में भी एक ऐसा ही विवरण मिलता है। जब नरबर में बैजाबाई की फौज संकट की स्थिति में थी तब उनके फौजी भी ग्वालियर आकर अपने अपने घोड़े तथा 5 महीने की पगार लेकर लौटे थे। इस प्रकार बांटिया जी के सहयोग से संकटग्रस्त फौजों ने राहत की सांस ली। अमरचंद बांटिया से प्राप्त धनराशि से बाकी सैनिकों को भी उनका वेतन दे दिया गया। ये स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति के समय अगर अमरचंद बांटिया ने क्रांतिवीरों की इस प्रकार आर्थिक सहायता न की होती तो उन वीरों के सामने कैसी स्थिति उत्पन्न होती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्रांतिकारी सेनाओं को काफी समय से वेतन नहीं मिला था, उनकी राशन पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इस कारण निश्चय ही क्रांतिकारियों के संघर्ष में क्षमता, साहस और उत्साह की कमी आती और लक्ष्मीबाई, राव साहब और तात्या टोपे को संघर्ष जारी रखना कठिन पड़ जाता। यद्यपि बांटिया जी के साहसिक निर्णय के पीछे उनकी अदम्य देशभक्ति की भावना छुपी हुई थी, लेकिन अंग्रेजी शब्दकोश में तो इसका अर्थ था देशद्रोह या राजद्रोह, और इसका प्रतिफल था सजाए मौत। अमरचंद बांटिया से प्राप्त इस सहायता से क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हो गए थे। उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। बौखलाए हुए ह्यूरोज ने चारों ओर से ग्वालियर पर आक्रमण की योजना बनाई। योजना के अनुसार ह्यूरोज ने 16 जून को मोरार छावनी पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया। 17 जून को ब्रिगेडियर स्मिथ से राव साहेब और तात्या टोपे का कड़ा मुकाबला हुआ। लक्ष्मीबाई इस समय आगरा की तरफ से आए सैनिकों से मोर्चा ले रही थीं। दूसरे दिन स्मिथ ने पूरी तैयारी से फिर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी 2 सहायक सहेलियों के साथ पुरुषों की वेशभूषा में आकर सेना की कमान संभाली। ये युद्ध निर्णायक हुआ जिसमें रानी को संगीन और गोली तथा तलवार के घाव लगे। उनकी सहेली की भी गोली से मृत्यु हो गई। हालांकि आक्रमणकर्ताओं को भी रानी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, किंतु घावों से वो मूर्छित हो गई थीं। साथियों द्वारा उन्हें पास ही बाबा गंगादास के बगीचे में ले जाया गया जहां वे वीर गति को प्राप्त हुईं। लक्ष्मीबाई के इस ऐतिहासिक बलिदान के मात्र 4 दिन बाद ही 22 जून 1858 को ग्वालियर में ही राजद्रोह के अपराध में न्याय का ढोंग रचा गया। न्याय के इस नाटक में अमरचंद बांटिया से पूछा गया कि आपने किस दबाव में राजकीय कोष गंगाजली की धनराशि क्रांतिकारियों को सौंप दी। अमरचंद बांटिया ने उत्तर दिया कि जिस समय ये धनराशि मैंने रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब के हवाले की उस समय यहाँ उनका अधिकार था, वे ही मेरे स्वामी और इस कोष के अधिकारी थे, इसलिए देश और स्वामी भक्ति की भावना के वशीभूत हो मैंने विवेकपूर्ण निर्णय ही लिया। वस्तुतः गंगाजली कोष का धन जनता का ही था और जनक्रांति में इसका इससे अच्छा क्या उपयोग हो सकता था।
मातृभूमि के लिए मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। उनके इस बयान के बाद लश्कर के एक भीड़ भरे सर्राफा बाजार में 22 जून 1858 को ब्रिगेडियर नेपियर द्वारा नीम के पेड़ से लटकाकर अमरचंद बाठिया को फांसी की सजा दे दी गई। भारत माता के ऐसे महान सपूत को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: तो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आज आपकी हम सफर हूँ मैं सुनीता सिंह। हमारे कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, बस एक छोटे से अंतराल के बाद प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दुस्साहस।

लखनऊ के नौबस्ते मोहल्ले में एक मुंशी मैकूलाल मुख्तार रहते थे। बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में इतने कुशल थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता था जिसमें किसी न किसी पक्ष की ओर से वो रखे न जाते हों। साधु संतों से भी उन्हें प्रेम था। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्वज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। रही शराब, तो ये उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वो कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता था। दम लगाकर वो वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रोब था, लेकिन ये उनकी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले के 51 ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। 100 काम छोड़कर उनकी खिदमत करते थे। उनकी मध्य जनित उदारता ने सबों को वशीभूत कर लिया था। वो नित्य कचहरी से आते ही अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक देते थे। कुछ कहने सुनने की जरूरत न थी, अलगू इसका आशय समझता था। शाम को शराब की एक बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ जाता था। बस महफिल जम जाती, यार लोग आ पहुंचते। एक ओर मुवक्किलों की कतार बैठती, दूसरी ओर सहवासियों की। वैराग्य और ज्ञान की चर्चा होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से भी मुकदमे की 2-1 बातें कर लेते। 10 बजे रात को वो सभा विसर्जित होती थी। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान चर्चा के सिवा और कोई सिरदर्द मोल न लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनका कोई संबंध न था। इस विषय में वो सच्चे विरक्त थे। बंग भंग हुआ, नरम गरम दल बने, राजनैतिक सुधारों का आविर्भाव हुआ, स्वराज की आकांक्षा ने जन्म लिया, आत्मरक्षा की आवाजें देश में गूंजने लगी, किंतु मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी विघ्न न पड़ा। अदालत और शराब के सिवाय वो संसार की सभी चीजों को माया समझते थे, सभी से उदासीन रहते थे। चिराग जल चुके थे, मुंशी मैकूलाल की सभा जम गई थी, उपासक गण जमा हो गए थे। अभी तक मदिरा देवी प्रकट न हुई थी। अलगू बाजार से न लौटा था। सब लोग बार बार उत्सुक नेत्रों से ताक रहे थे। एक आदमी बरामदे में प्रतीक्षा स्वरूप खड़ा था। 2-3 सज्जन टोह लेने के लिए सड़क पर खड़े थे, लेकिन अलगू आता नजर न आता था। आज जीवन में पहला ऐसा अवसर था कि मुंशी जी को इतना इंतजार करना पड़ा। उनकी प्रतीक्षाजनक उद्विग्नता ने गहरी समाधि का रूप धारण कर लिया था। न कुछ बोलते थे, न किसी की ओर देखते थे। समस्त शक्तियां प्रतीक्षा बिंदु पर केंद्रीभूत हो गईं। अकस्मात सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े। सहवासी गण खिल गए, आसन बदलकर संभल बैठे। उनकी आंखें अनुरक्त हो गईं। आशामय विलंब आनंद को और बढ़ा देता है। कुछ क्षण में अलगू सामने आकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं, ये पहला अपराध था, इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। दबे हुए पर उत्कंठा युक्त नेत्रों से अलगू के हाथ की ओर देखा, बोतल न थी। विस्मय हुआ, विश्वास न आया। फिर गौर से देखा, बोतल न थी। ये अप्राकृतिक घटना थी, पर इस पर उन्हें क्रोध न आया। नम्रता के साथ पूछा, बोतल कहां है? अलगू ने कहा, आज नहीं मिली। ये क्यों? दुकान के दोनों नाके रोके हुए सुराज वाले खड़े हैं, किसी को उधर जाने ही नहीं देते। अब मुंशी जी को क्रोध आया, अलगू पर नहीं, स्वराज वालों पर। उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तर्क भाव से बोले, तुमने मेरा नाम नहीं लिया? बहुत कहा, लेकिन वहां कौन किसी की सुनता था? सभी लोग लौट आते थे, मैं भी लौट आया। चरस लाए? वहां भी वही हाल था। अरे तुम मेरे नौकर हो या स्वराज वालों के? मुंह में कालिख लगवाने के लिए थोड़ी ही नौकर हूं। तो क्या वहां बदमाश लोग मुंह में कालिख भी लगा रहे हैं? देखा तो नहीं, पर सब यही कहते थे। अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूं, देखूं तो किसकी मजाल है जो रोके। एक एक को लाल घर दिखा दूंगा। ये सरकार का राज है, कोई बदमिली नहीं। वहां कोई पुलिस का सिपाही ना था? थानेदार साहब आप ही खड़े सबसे कहते थे, जिसका जी चाहे शराब ले या पिए, लेकिन सब लौट आते थे, उनकी कोई न सुनता था। थानेदार मेरे दोस्त हैं। चलो जी ईदू, चलते हो? रामबली, बेचन, झिनकू, सब चलो, एक एक बोतल ले लो, देखूं कौन रोकता है। कल को ही मजा चखा दूंगा।
मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ शराब खाने की गली के सामने पहुंचे।

0: गौरवोन्मत्त दृष्टि से अपने साथियों को देखा और गली में घुसे कि इतने में मौलाना जामिन ने ईदू से बड़ी नम्रता से कहा, दोस्त ये तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहां कैसे आए? क्या इसी दीनदारी के बल पर खिलाफत का मसला हल करेंगे? ईदू के पैरों में जैसे लोहे की बेड़ी पड़ गई। लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर ताकने लगा, आगे कदम रखने का साहस न हुआ। स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी तीन साथियों से कहा, बच्चा ये पंचामृत लेते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिनकू, रामबली और बेचन ने अनिवार्य भाव से हाथ फैला दिए और स्वामी जी से पंचामृत लेकर पी गए। मुंशी जी ने कहा, इसे आप खुद पी जाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं। स्वामी जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनोद भाव से बोले, इस भिक्षुक पर आज दया कीजिए, उधर न जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के पीछे सर झुकाए खड़े रहे। मुंशी जी बोले, रामबली, जिनकू, आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है कि हमें रोक सके? जिनकू बोला, तुम ही काहे नहीं लौटावत हो? साधु संतन की बात के माने होत है कि नहीं?
1: तो इसी हौसले पर घर से निकले थे?
0: अरे निकले थे कि कोई जबरदस्ती रोकेगा तो उसे समझेंगे, साधु संतों से लड़ाई करने थोड़ी चले थे।
1: मुंशी जी अब बोले, सच कहा है, गंवार भेड़ होते हैं भेड़।
0: आप शेर हो जाएं, हम भेड़ ही बने रहेंगे। मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई हुई थी। कलवार अपनी गद्दी पर बैठा ऊंग रहा था। मुंशी जी की आहट पाकर चौंक पड़ा, उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा, मानो ये कोई विचित्र जीव है। बोतल भर दी और ऊंघने लगा। मुंशी जी गली के द्वार पर आए तो अपने साथियों को न पाया। बहुत से आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निंदा सूचक बोलियां बोलने लगे। एक ने कहा, दिलावर हो तो ऐसा हो। दूसरा बोला, शर्मचे कुत्तीस्त के पेशे मर्दा विवाद, अर्थात मर्दों के सामने लज्जा नहीं आ सकती। तीसरा बोला, है कोई पुराना पियक्कड़, पक्का लतियल। इतने में थानेदार साहब ने आकर भीड़ हटा दी। मुंशी जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर चले। एक कांस्टेबल भी रक्षार्थ उनके साथ चला। मुंशी जी के चारों मित्रों ने बोतल फेंक दी और आपस में बातें करते हुए चले। जिनकू बोला,
1: एक बेर हमारा इक्का बेगार में पकड़ जात रहे तो यही स्वामी जी चपरासी से कह सुन के छुड़ाए दिन रहा।
0: रामबली बोला, पिछले साल जब हमारे घर में आग लगी थी तब भी तो यही सेवा समिति वालों को लेकर पहुंच गए थे, नहीं तो घर में एक सूत न बचता। हब बेचन बोला, मुख्तार अपने सामने किसी को गिनते ही नहीं, आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिपके करता है, अरे ये नहीं कि बिहाई पर कमर बांध ले। अब फिर से एक बार जिनको बोला,
1: भाई पीठ पीछे को के बुराई न करे चाहे, और जौन कछु होए पर आदमी बड़ा अकबाली हो, उतने आदमियों के बीच मां कैसन घुसन चला गवा।
0: अरे ये कोई अकबाल नहीं है, थानेदार ना होता तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता, रामबली ने कहा। बेचन बोला,
1: मुझे तो कोई 50 रुपए देता तो भी गली में पैर न रख सकता, शर्म से ही सिर नहीं उठता था।
0: अब के ईदू ने कहा, इनके साथ आकर आज बड़ी मुसीबत में फंस गया, मौलाना जहां देखेंगे वही आड़े हाथों लेंगे, दीन के खिलाफ ऐसा काम क्यों करें कि शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया, आज तौबा करता हूं, अब इसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखूंगा।
1: रामबली ने कहा, शराबियों की तौबा कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती।
0: ईदू ने कहा, अगर फिर कभी मुझे पीते देखना तो मुंह में कालिख लगा देना। बेचन कहने लगा, अच्छा तो इसी बात पर आज मैं इसे छोड़ता हूं, अब पीऊं तो गौ रक्त बराबर।
1: जिनकू बोलने लगा, तो हमका ही सबसे पापी हन, फिर कभू जो हमका पियत देखो बिठाए के 50 जूता लगाओ।
0: रामबली बोला, अरे जा, अभी मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह दौड़ते जाओगे।
1: मुंशी जी के साथ बैठे देखियो तो 100 जूता लगायो, जिनके बात में फर्क है उनके बाप में फर्क है।
0: अब के जिनकू ने ये कहा, तो भाई मैं भी कसम खाता हूं कि आज से गांठ के पैसे निकाल कर ना पीऊंगा। हाँ, अब मुफ्त में पीने में इनकार रहे।
1: रामबली ने कहा, गांठ के पैसे तुमने कभी खर्च किए हैं?
0: जवाब बेचन ने दिया। इतने में मुंशी मैकूलाल लपके हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वो बाजी मारकर आए थे, मुख पर विजय गर्व की जगह खिसियानापन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वो इस विजय का हार्दिक आनंद ना उठा सकते थे।
1: हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा उन्हें चुटकियां ले रही थी। वो स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का खेद उन्हें व्यथित कर रहा था। रामबली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई। तुम सब के सब गांवदे ही निकले, एक साधु के चकमे में आ गए।
0: इन लोगों ने तो आज से शराब न पीने की कसम खा ली है।
1: ऐसा तो मैंने कोई मर्द ही नहीं देखा जो एक बार इसके चंगुल में फंसकर निकल जाए। मुंह से बकना दूसरी बात है।
0: हिदू बोला, जिंदगी रही तो देख लीजिएगा।
1: झिनकू ने कहा, दाना पानी तो कौ से नहीं छूट सकत है, और बातन का जब मनमा आवे छोड़ दे, बस चोट लग जाए का चाही, नशा खाए बिना कौ मर नहीं जात है।
0: उंची जी बोले,
1: अच्छा देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी।
0: देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। यही होगा ना कि दो चार दिन जी सुस्त रहेगा। लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था जो से पानी की तरह पीते हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात है क्या? यही बातें करते हुए लोग मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुंचे। दीवान खाने में सन्नाटा था। मुवक्किल चले गए थे, अलगू पड़ा सो रहा था। मुंशी मसनत पर जा बैठे और अलमारी से गिलास निकालने लगे। उन्हें अभी तक अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की सुगंध और लालिमा देखते ही सभी की तौबा टूट जाएगी। जहां मैंने जरा बढ़ावा दिया, वहीं सब के सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी। जब ईदू सलाम करके चलने लगा और झिनकू ने अपना डंडा संभाला, तो मुंशी जी ने दोनों के हाथ पकड़ लिए और बड़े मृदुल शब्दों में बोले, यारों यूं साथ छोड़ना अच्छा नहीं। आओ आओ, जरा इसका मजा तो चखो, खास तौर पर अच्छी है। अजी अजी आओ तो, इन बातों में धरा ही क्या है। ईदू ने कहा, आप ही को मुबारक रहे, मुझे जाने दीजिए। झिनकू बोला,
1: हम तो भगवान चाही तो एक के निकट न जाब, जूता कौन खाए।
0: ये कहकर दोनों अपने अपने हाथ छुड़ाकर चले गए। तब मुख्तार साहब ने बेचन का हाथ पकड़ा जो बरामदे से नीचे उतर रहा था। बोले,
1: बेचन क्या तुम भी बेवफाई करोगे?
0: बेचन ने कहा, मैंने तो बड़ी कसम खाई है, जब एक बार इसे गौरक्त कह चुका तो फिर इसकी ओर ताक भी नहीं सकता। कितना ही गया बीता हूं तो क्या गौरक्त की लाज भी ना रखूंगा क्या? अब आप भी छोड़िए, कुछ दिन राम राम कीजिए, बहुत दिन तो पीते हो गए। ये कहकर वो भी सलाम करके चलता हुआ। अब अकेले राम बली रह गया। मुंशी जी ने उससे शोकातुर होकर कहा,
1: देखी राम बली, इन सभी की बेवफाई, ये लोग ऐसे ढुलमुल होंगे मैं ना जानता था। आओ आज हम ही तुम सही, दो सच्चे दोस्त ऐसे दर्जनों कचलोहियों से अच्छे हैं। आओ आओ बैठ जाओ।
0: राम बली ने कहा, मैं तो हाजिर ही हूं, लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि कभी गांठ के पैसे खर्च करके न पीऊंगा।
1: मुंशी जी बोले, अजी जब तक मेरे में दम है तुम जितना चाहे पियो, गम क्या है?
0: राम बली बोले, लेकिन आप न रहे तब
1: ऐसा सज्जन कहां पाऊंगा? अजी तब देखी जाएगी, मैं आज थोड़ा मरा जाता हूं।
0: राम बली बोले, जिंदगी का कोई अतबार नहीं, आप मुझसे पहले जरूर ही मरेंगे, तो उस वक्त मुझे रोज कौन पिलाएगा? तब तो छोड़ भी ना सकूंगा, इससे बेहतर है कि अभी से फिक्र करूं।
1: यार ऐसी बातें करके दिल ना छोटा करो, आओ बैठ जाओ, एक ही गिलास ले लेना।
0: मुख्तार साहब, अब ज्यादा मजबूर ना कीजिए। जब ईदू और झिनकू जैसे लातियों ने कसम खा ली जो औरतों के गहने बेच बेच पी गए और निरे मूर्ख हैं, तो मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं कि इसका गुलाम बना रहूं। स्वामी जी ने मेरा सर्वनाश होने से बचाया है, उनकी आज्ञा मैं किसी तरह नहीं टाल सकता। ये कहकर राम बली भी विदा हो गया। मुंशी जी ने प्याला मुंह से लगाया, लेकिन दूसरा प्याला भरने के पहले उनकी मद्यातुरता गायब हो गई थी। जीवन में पहला अवसर था कि उन्हें एकांत में बैठकर दवा के भांति शराब पीनी पड़ी। पहले तो सहवासियों पर झुंझलाए, दगाबाजों को मैंने सैकड़ों रुपए खिला दिए होंगे, लेकिन आज जरा सी बात पर सब के सब फिरंट हो गए। अब मैं भूत की भांति अकेला पड़ा हुआ हूं, कोई हंसने बोलने वाला नहीं। ये सोहबत की चीज है, जब सोहबत का ही आनंद ना रहा तो पीकर खाट पर पड़े रहने से क्या फायदा। आज मेरा कितना अपमान हुआ, जब मैं गली में घुसा हूं तो सैकड़ों ही आदमी मेरी ओर आग्नेय दृष्टि से ताक रहे थे। शराब लेकर लौटा हूं तब तो लोगों का वश चलता तो मेरी बोटियां नोच खाते, थानेदार ना होता तो घर तक आना मुश्किल था। यह अपमान और लोक निंदा किस लिए? इसलिए कि घड़ी भर बैठकर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं?
1: कोई हंसी चूहल करने वाला तक नहीं। लोग इसे कितनी त्याज्य वस्तु समझते हैं, इसका अनुभव मुझे आज ही हुआ। नहीं तो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर बरसों के लती पियक्कड़ यूं मेरी अवहेलना न करते। बात यही है कि अंतःकरण से सभी इसे निषिद्ध मानते हैं। जब मेरे साथ के ग्वाले, केवान और कहार तक इसे त्याग सकते हैं, तो क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूं? इतना अपमान सहकर, जनता की निगाह में पतित होकर, सारे शहर में बदनाम होकर, नक्कू बनकर एक क्षण भर के लिए सिर में सरूर पैदा कर लिया तो क्या काम किया? कुवासना के लिए आत्मा को इतना नीचे गिराना क्या अच्छी बात है? वो चारों इस घड़ी मेरी निंदा कर रहे होंगे, मुझे दुष्ट बना रहे होंगे, मुझे नीच समझ रहे होंगे। इन नीचों की दृष्टि में मैं नीचा हो गया। ये दुरावस्था नहीं सही जाती। आज इस वासना का अंत कर दूंगा, अपमान का अंत कर दूंगा। एक क्षण में धड़ाके की आवाज हुई। अलगू चौंक कर उठा तो देखा कि मुंशी जी बरामदे में खड़े हैं और बोतल जमीन पर टूटी पड़ी है।

0: तो सुनो कहानी में, आज आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दुस्साहस। फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी। हमारी इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

यदि हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आई है आओ नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्र जनों का नदिया से परिचय करवाते। यदि हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। कितनी खूबसूरत सी कल्पना, कितनी मासूम सी चाहत। जी हाँ श्रोताओं, हम सब के जीवन में नदी की स्मृति होती है। हमारा जीवन स्मृतियों की नदी है। नदी खोजते हुए हम घर से निकल आते हैं और घर से निकलकर हम खोई हुई एक नदी याद करते हैं। हम सब के साथ एक नदी चलती है, हम सब के भीतर एक नदी बहती है। बचपन में कभी तबीयत से उछाला एक पत्थर नदी के साथ बहता है, और नदी की तलहटी में कोई सिक्का चुप प्रार्थनाओं से लिपटा पड़ा रहता है। नदियों से हमारा रिश्ता आदिम है। नदी का होना नमी का होना है, इसलिए अपने आसपास की नदियों को स्वच्छ रखिए, उन्हें समृद्ध कीजिए, उन्हें संजोइए, कि धरती पर नदियां बहती रहें निर्बाध अविरल, कि जीवन में नमी बनी रहे, कि धरती पर जीवन बना रहे।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए, हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम लेकर उपस्थित होंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरासिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। मैं हूँ आपका रेडियो मित्र विजयकांत नायक।
2: और मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर गौसिया।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान की।

0: कला कललिनी में बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जो एक साज का ही पर्याय बन गया, एक ऐसा कलाकार जिसने एक वाद्य को शादियों के मंडप से निकालकर शास्त्रीयता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
1: सुना आपने श्रोताओं, ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये बनारस की सुबह की पहली अंगड़ाई है। ये उस शख्स की फूंक है जिसने पत्थर के बुतों में भी जान डाल दी। आज हम किसी इंसान की नहीं, जैसे एक इबादत की बात कर रहे हैं। आज जिक्र है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का।
0: श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाश में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। उन्होंने एक ऐसे वाद्य यंत्र को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया जिसे कभी केवल मांगलिक कार्यों या शादियों तक सीमित समझा जाता था। शहनाई, जो कभी महलों की द्योड़ी पर बजने वाला एक मामूली सा साज हुआ करता था, उस्ताद की जादुई फूंक से वह शास्त्रीय संगीत की रानी बन गया।
1: जी हाँ, बिस्मिल्लाह खान महज एक संगीतकार नहीं थे, वे भारत की उस मिलीजुली संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक थे, जहां मजहब की दीवारें संगीत के स्वरों में विलीन हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि पहले शहनाई सिर्फ शादियों में या महलों के गलियारों में ही बजती थी, लेकिन इस जादूगर ने उसे महलों की ड्योढ़ी से उठाकर सात समंदर पार ओपेरा हाउस तक पहुंचा दिया।
0: तो चलिए आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर सुरों की स्याही बिखरी है। बात करते हैं उस फकीर की जिसकी फूंक में खुदा का नूर था, एक ऐसा कलाकार जिसने शहनाई को शादियों के शोर से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल की इबादत बना दिया।
1: आज हम सिर्फ एक संगीतकार की बात नहीं कर रहे, आज हम भारत की उस साझी तहजीब की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानती है। एक ऐसा शख्स जिसने नमाज भी पढ़ी और माँ सरस्वती की आराधना भी की।
0: श्रोताओं, अक्सर लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बनारस का समझते हैं, हालांकि बनारस में उनकी रूह जैसे बस्ती थी, पर उनकी जड़ें बिहार के डुमराव की मिट्टी में हैं। 21 मार्च 1916 के दिन पैगंबर बख्श खान के घर खुशियां आईं, जन्म हुआ एक असाधारण प्रतिभा का।
1: हाँ, और नाम का किस्सा तो इतना मशहूर है कि आज भी लोग उसे चाव से सुनते हैं। उनका नाम तो कमरुद्दीन रखा गया था, लेकिन जब उनके दादा रसूल बख्श खान ने उस मासूम को देखा तो उनके कानों में जैसे कुदरत ने कुछ कहा। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह,
0: और बस वो लफ्ज उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ा कि आज दुनिया उन्हें उसी नाम से जानती है। श्रोताओं, मानती भी है और पूछती भी है। उनके पूर्वज भोजपुर की रियासत के दरबारी संगीतकार थे, यानी शहनाई उनके पालने में ही रख दी गई थी। संगीत उनके लिए कोई शौक नहीं बल्कि विरासत था। उनकी माँ मिठन बाई ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। उनके पिता पैगंबर बख्श खान और दादा रसूल बख्श खान दोनों ही डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबारी संगीतकार थे, तो उनके दादा और पिता ने उनका परिचय संगीत के स्वरों से कराया और बिस्मिल्लाह हुआ जैसे एक महानता के सफर का।
1: लेकिन वो विरासत, वो तालीम निखरी बनारस के घाटों में और मंदिरों में, और जहां वो महज 6 साल की उम्र में अपने मामा के पास चले आए। उनके मामा थे अली बख्श विलायती, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक शहनाई वादक थे। उन्होंने ही बिस्मिल्लाह को उस्ताद बिस्मिल्लाह बनाया। उनकी तालीम महज स्वरों की पहचान नहीं थी, एक तपस्या थी। सुबह के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कड़कड़ाती ठंड हो या बारिश, माँ उन्हें गंगा किनारे बालाजी मंदिर के पास ले जाकर बैठा देती। वहां घंटों तक सा का रियाज होता, यानी घंटों तक सिर्फ एक ही सुर का अभ्यास।
0: जी हाँ, आज भी संगीत में यही तो कहते हैं उच्च कोटि के गुरु, एक सादे सब सदे, सब सादे सद जाएं। और फिर वो बंदिश भी तो शास्त्रीय संगीत में आज भी बहुत गाई जाती है, साधे प्रथम सुर। उनके मामा का कहना था सुर को गले से नहीं रूह से निकालो। मामा का सख्त निर्देश था, बेटा जब तक तुम्हारी शहनाई से निकलने वाला सुर पत्थर को ना पिघला दे तब तक रियाज मत छोड़ना। श्रोताओं, वो अक्सर कहते थे कि रियाज के दौरान उन्हें बालाजी मंदिर में एक अजीब सी खुशबू आती थी, उन्हें महसूस होता था कि साक्षात भगवान उनके सुरों को सुन रहे हैं। इसी सादगी और यकीन ने उन्हें एक कलाकार से उठाकर एक सूफी बना दिया। वो मंदिर की शांति और गंगा की लहरों के बीच बस संगीत के व्याकरण को नहीं, संगीत की रूप

0: वाकई क्या कमाल का इश्क था खान साहब को संगीत से।
1: 1937 में कोलकाता के ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने शहनाई बजाई तो संगीत जगत के दिग्गज दंग रह गए। उससे पहले शहनाई को शास्त्रीय संगीत के योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने अपनी कठिन साधना से साबित कर दिया कि शहनाई में भी वे सभी बारीकियां और जटिलताएं पैदा की जा सकती हैं जो सितार या सरोद में होती हैं। उन्होंने राग रागनियों को शहनाई पर उतारा और उसे एक नया गौरव प्रदान किया।
0: आइए अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के जीवन के उन गहरे पहलुओं को विस्तार देते हैं जो उन्हें एक कलाकार से ऊपर उठाकर एक युग पुरुष बनाते हैं। यहाँ जानते हैं उनके रागों की विशेषता, उनके प्रमुख शिष्यों और उनके जीवन के अनछुए बनारसी रंगों को। खान साहब की शहनाई में जो बात सबसे अलग थी वह थी उनकी मीड़, एक सुर से दूसरे सुर तक बिना टूटे पहुंचना और गमक। शास्त्रीय संगीत में शहनाई को एक कठोर वाद्य माना जाता था, लेकिन खान साहब ने उसे मानव कंठ जैसी कोमलता दी।
1: वे हर राग में निपुण थे, लेकिन राग भैरवी उनका प्राण था। कहा जाता है कि जब वे भैरवी बजाते थे तो सुनने वालों की आंखों से आंसू छलक आते थे। इसके अलावा राग बागेश्वरी, राग केदार, राग यमन और राग दरबारी पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी।
0: खान साहब ने केवल शुद्ध शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि बनारस की लोक गायकी, ठुमरी, कजरी और चेता को भी शहनाई पर उतारा। उनके द्वारा बजाई गई चेता सुनकर ऐसा लगता था जैसे बनारस के किसी घाट पर साक्षात वसंत उतर आया हो। इसके साथ ही खान साहब को सर्कुलर ब्रीदिंग में महारत हासिल थी।
1: ये एक ऐसी तकनीक थी जिसमें वे नाक से सांस लेते थे और मुंह से शहनाई में फूंक मारते थे। इससे संगीत का प्रवाह कभी टूटता नहीं था। वे बिना रुके कई मिनटों तक एक ही तान खींच सकते थे, जो फेफड़ों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण था।
0: जी हाँ, तभी तो वो रच पाए इतिहास, आजाद भारत की पहली आवाज बनने का। दोस्तों, इतिहास का वो पन्ना कोई कैसे भूल सकता है जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाने वाला था। पंडित नेहरू ने खास तौर पर खान साहब को दिल्ली बुलाया।
1: बिस्मिल्लाह खान साहब द्वारा लाल किले पर शहनाई वादन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना थी। तब लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से राग काफी बजाकर आजादी का स्वागत किया था। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये इच्छा जताई थी कि बिस्मिल्लाह खान इस शुभ अवसर पर अपनी शहनाई बजाएं।
0: और इसके लिए बिस्मिल्लाह खान साहब को विशेष रूप से मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था। उन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से लाया गया। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह घटना न केवल उनके संगीत करियर के लिए बल्कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए भी एक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने शहनाई को राष्ट्र की आवाज बना दिया।
1: बिल्कुल, आजाद भारत की सुबह का स्वागत किसी भाषण से नहीं बल्कि खान साहब की शहनाई से हुआ था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राग काफी छेड़ा था। उस दिन पूरी दुनिया ने माना कि भारत की आजादी की गूंज शहनाई में बसी है। तब से ये परंपरा बन गई कि हर स्वतंत्रता दिवस पर उनकी शहनाई दूरदर्शन पर गूंजती रहती है।
0: श्रोताओं, जब उनकी शोहरत बढ़ी तो फिल्मों के दरवाजे भी खुले। 1959 में फिल्म आई गूंज उठी शहनाई। निर्देशक विजय भट्ट तो उनके इतने दीवाने थे कि उन्होंने फिल्म का पूरा प्लॉट ही शहनाई के इर्द गिर्द बुना। उनका बजाया गाना दिल का खिलौना हाय टूट गया आज भी लोगों को रुला देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कामयाबी के बाद भी खान साहब ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उन्होंने सिर्फ दो फिल्में की, जिनमें से एक दक्षिण भारत की थी, कन्नड़ फिल्म सनदी अपन्ना। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, मुझे फिल्मों की बनावटी दुनिया पसंद नहीं, वहां संगीत बिकता है और यहाँ संगीत जिया जाता है। उन्हें स्टूडियो की बंद दीवारों से ज्यादा गंगा का किनारा और खुला आसमान पसंद था। उनके लिए संगीत व्यापार नहीं बल्कि खुदा की इबादत थी। उन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए सिर्फ अपनी सादगी और सुकून के लिए। तभी तो वो शहनाई के शहंशाह कहलाए।
1: उनकी सादगी का एक मशहूर किस्सा है कि वे अक्सर फटी हुई लुंगी पहन लेते थे। जब उनके शिष्यों ने कहा कि बाबा आप इतने बड़े कलाकार हैं, भारत रत्न हैं, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पगलो मालिक से सुर मांगो, कपड़े नहीं, ये लुंगी तो रफू हो जाएगी, लेकिन अगर सुर फट गया तो उसे कोई रफू नहीं कर पाएगा। यह उनकी महानता का परिचायक था।
0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उनके बनारसी मिजाज की। उस्ताद का व्यक्तित्व पूरी तरह से बनारसी था। उनके जीवन में दिखावा नाम मात्र को भी नहीं था।
1: उन्हें बनारस की कचौरी, जलेबी और खास तौर पर मलाई और बनारस की एक खास मिठाई बहुत पसंद थी। वे अक्सर अपने घर के पास वाली दुकान से खुद नाश्ता मंगाते थे। उनकी दिनचर्या बड़ी दिलचस्प थी। वे सुबह गंगा में स्नान करते थे, सरस्वती मंदिर में माथा टेकते थे और फिर मस्जिद जाकर नमाज अदा करते थे। वे कहते थे, सुर ही मेरा अल्लाह है और सुर ही मेरी सरस्वती।
0: और श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि युवा अवस्था में खान साहब को कुश्ती का भी बहुत शौक था। वे पहलवानों का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अखाड़ों में जाकर उनकी हौसला अफजाई करते थे। खान साहब शुरू में विदेश जाने से बहुत डरते थे। उन्हें हवाई जहाज से डर लगता था। 1966 में जब भारत सरकार ने उन्हें एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए कहा, तो उन्होंने कई बहाने बनाए। फिर उन्होंने शर्त रख दी कि मैं तभी जाऊँगा जब मुझे और मेरी पूरी टीम को सरकारी खर्चे पर हज की यात्रा करवाई जाएगी। सरकार ने शर्त मान ली और जब वो एडिनबर्ग पहुंचे तो वहां के अखबारों ने लिखा, ये संगीत नहीं खुदा की आवाज है।
1: और फिर इसके बाद तो वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपो 1967, कांस आर्ट फेस्टिवल 1969 और ओसाका ट्रेड फेयर 1970 जैसे बड़े मंचों पर भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में तो आज भी उनकी यादें बसी हुई हैं। लेकिन इतनी शोहरत और धन मिलने के बावजूद उनकी सादगी कभी कम नहीं हुई। वे ताउम्र बनारस की तंग गलियों में एक साधारण से मकान में रहे। खान साहब शायद भारत में अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चारों शीर्ष नागरिक सम्मान प्राप्त किए। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और अंत में 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया।
0: लेकिन इतने पुरस्कारों के बाद भी उनकी सादगी नहीं बदली। वो अक्सर बनारस में साइकिल रिक्शा पर घूमते हुए मिल जाते थे। एक बार एक विदेशी फैन ने उनसे कहा, खान साहब आप अमेरिका चलिए, मैं आपके लिए वहाँ पूरा बनारस बना दूंगा। और खान साहब ने बड़ी मासूमियत से पूछा, साहब सब तो ले आओगे पर मेरी गंगा मैया को वहाँ कैसे लाओगे? उनके लिए गंगा का पानी और बनारस की मिट्टी किसी स्वर्ग से बढ़कर थी।
1: अक्सर कहा जाता है श्रोताओं की एक कलाकार की असली पहचान वो नहीं जो वो खुद कहे, बल्कि वो है जो उसके समकालीन दिग्गज उसके बारे में कहें। और खान साहब के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में फैले थे। सितार सरताज पंडित रविशंकर ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, शहनाई को शादियों के पंडाल से निकालकर क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज तक लाने का पूरा श्रेय सिर्फ बिस्मिल्लाह खान को जाता है। उन्होंने इस साज को एक नई इज्जत बख्शी है।
0: और सिर्फ संगीतकार ही नहीं, सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी तो उन्हें बाबा कहकर बुलाती थी। उन्होंने एक बार कहा था, खान साहब की शहनाई में जो दर्द और मिठास है वो किसी इंसान की फूंक नहीं बल्कि खुदा का नूर लगता है। और आपको पता है सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान साहब ने उनके बारे में क्या कहा है? वे कहते हैं, खान साहब का संगीत व्याकरण नहीं बल्कि कविता है, वे सुरों से चित्र बना देते हैं।
1: जी हाँ, पश्चिमी दुनिया के मशहूर गिटारिस्ट एरिक क्लैप्टन उनकी मुरीद हुआ करते थे। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि वे अपने गिटार से वैसी ही कशिश पैदा करने की कोशिश करते हैं जैसी खान साहब की शहनाई में होती थी। यही उनकी महानता थी। चाहे वो पंडित नेहरू हों या बनारस की गलियों का कोई आम रिक्शे वाला, खान साहब सबके लिए एक समान थे। वे अक्सर कहते थे, सुर सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। वे एक सच्चे मुसलमान थे जो पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे, लेकिन साथ ही वे माँ सरस्वती के परम भक्त भी थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की देवड़ी पर बैठकर शहनाई बजाना उनकी रोज की इबादत हुआ करती थी। वे कहते थे कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने अपने जीवन से ये संदेश दिया और सुर और ताल किसी सीमा या मजहब में नहीं बंधे होते ये भी बताया।
0: उस्ताद साहब के रिलीज संगीत एल्बम्स की अगर हम बात करें तो द मैजिक शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान 1962, बिस्मिल्ला खान पंडित वी जी जोग के साथ 1962, राग बागेश्वरी राग सोहनी 1963, शहनाई रिसाइटल 1963, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वेरियस रागास 1987 और मेघ मल्हार वॉल्यूम 1 1991 शामिल हैं।
1: इसके साथ ही उनके लोकप्रिय संग्रह द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ उस्ताद बिस्मिल्ला खान, प्लेटिनम वॉल्यूम 1 कजरी, द रेन राग 2016, शादी की शहनाई वॉल्यूम 1 एंड 2 1995, रूबरू वॉल्यूम 1 एंड 2 2004, इबादत रागिनी यामिनी लाइव एट द बार्बिकन सेंटर 1994। इसके साथ ही उनके द्वारा बजाए गए रागों में श्याम कल्याण और शंकरा बेहद शांत और आध्यात्मिक माने जाते हैं। उस्ताद के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों की मदद में खर्च कर दिया। उनके घर में अक्सर 40 से 50 लोग एक साथ खाना खाया करते थे। वे एक संयुक्त परिवार के स्तंभ थे।
0: 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में इस महान संगीत साधक ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ बनारस में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनकी प्रिय शहनाई को भी उनके साथ ही दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो आमतौर पर केवल बड़े राजनेताओं के लिए होता है। यह इस बात का प्रमाण था वे एक संगीतकार नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा थे।
1: बिस्मिल्ला खान साहब ने हमें सिखाया कि सच्ची कला बाजार में नहीं बिकती, वे साधना की कोख से जन्म लेती है। उनके शहनाई की गूंज आज भी हर भारतीय शादी की सुबह, हर मंदिर की आरती और हर मस्जिद की अजान के बीच कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। श्रोताओं, वे शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक ऐसी दास्तां है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।
0: शहनाई को अपनी बेगम कहने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान आज हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनकी शहनाई की तान आज भी हवाओं में तैरती हुई महसूस होती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े कैसे रहा जाता है। उन्होंने संगीत को इबादत बनाया और इबादत को संगीत। उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि कला महज प्रदर्शन की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब तक गंगा की लहरें काशी के घाटों से टकराती रहेंगी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई भी गूंजती रहेगी।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, जो आज केंद्रित था उस्ताद बिस्मिल्ला खान पर। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाठक, आलेख संदीप शर्मा का था, वाचन स्वर विजयकांत नायक
1: और मैं डॉक्टर गौसिया।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशगान।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज श्री शिव भाई गुप्ता निमाणी लोक गायन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, आपको हम बता दें कि विगत 32 वर्षों से आप कला जगत में सक्रिय हैं। गायन के साथ साथ आपने लगभग 2000 गीतों की रचना की है तथा उसे संगीतबद्ध भी किया है। आपके अनेक एल्बम्स रिलीज हुए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिव भाई गुप्ता जी का। सभी कलाकार इस वक्त मंच पर हैं। कलाकारों से आपका परिचय हम करवा दें। सहगायक हैं श्री मुकेश यादव और श्री विशाल साध। संगत कलाकार हैं ढोलक पर श्री रामबली पटेल, तबले पर श्री राम यादव, ऑर्गन पर श्री विशाल साध और ऑक्टोपैड पर श्री मोहित पाटिल। श्री शिव भाई गुप्ता से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।

0: माता की
1: जय हो।
0: एक छोटी सी रचना आज बिरसा मुंडा जी, जिनकी शहादत दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए एक संदेश है, आशा माता भारती का लाल, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो,

0: माता की
1: जय हो,
0: बिरसा मुंडा भगवान की
1: जय हो।
0: जो हमारा बिरसा मुंडा जी की जितना महिमा चरित्र चित्रण बोला उतनी कम है, पर एक कलाकार को प्रयास है। देखो आज भी कहावत है, ये आजादी बड़ी अनमोल है,

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, सुर संगीत और सितार को समर्पित रहे तीन आयोजन कल, गजलों से नाद योग तक जब सुरों ने जोड़ दी तीन महफिलें। कहीं जगजीत सिंह की गजलों की नर्म खुशबू हवा में घुल रही थी, कहीं सितार के तार ध्यान और योग का सेतु बना रहे थे, तो कहीं शास्त्रीय गायन और भरतनाट्यम संस्कृति की गहराई का एहसास करा रहे थे। विश्व योग एवं संगीत दिवस पर रविवार पूरे दिन सुरों, साधना और संवेदनाओं के नाम रहा। आयोजन ने यह साबित किया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मन को शांत करने, संस्कृति से जोड़ने और आत्मा को छूने का सशक्त माध्यम है। जनजातीय संग्रहालय में संस्कृति विभाग की संगीत संध्या में प्रदक्षिणा भट्ट ने राग यमन कल्याण, तराना और विभिन्न रागों की प्रस्तुति से श्रोताओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों से रूबरू कराया। इसके बाद पुणे की भरतनाट्यम नृत्यांगना स्मिता महाजन और उनकी शिष्याओं ने विनायक स्तुति, मल्लारी, देवी कौतुकम, पद्म और तिल्लाना की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। देवी कौतुकम में सरस्वती, लक्ष्मी और अम्बा की स्तुति तीन अलग अलग रागों और तालों में प्रस्तुत की गई, जबकि समापन मातृभूमि को समर्पित तिल्लाना से हुआ। ख्याल ऑडिटोरियम में आयोजित उन्स एक में गजल प्रेमियों को यादगार शाम मिली। गायिका श्रीजा उपाध्याय ने अपनी पहली सोलो गजल प्रस्तुति में झुकी झुकी सी नजर, होठों से छू लो तुम जैसी जगजीत सिंह की लोकप्रिय गजलों समेत कई रचनाएं पेश कर खूब वाहवाही बटोरी। आयुष ओझा, स्वप्निल बागुल जैसे कई कलाकारों ने मंच को रोशनी दी। इशिता जैन की बैठकी भाव पेश किया गया। स्वरंग आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की ओर से त्रिरंगा स्थित हनुमान मंदिर में भी मेडिटेशन थ्रू म्यूजिक नाद योग का आयोजन हुआ। शुरुआत राग भटियार में राम का गुणगान करिए से हुई। इसके बाद राग भैरव में जागो मोहन प्यारे की सामूहिक सितार प्रस्तुति हुई। समापन भैरवी की धुन से सितार वादक स्मिता नागदेव ने अपनी संगीत यात्रा का श्रेय पिता और चित्रकार सचिदा नागदेव को दिया।

में ख्याल आता है, एक प्यार का नगमा है और जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुतियाँ हुईं। इन गीतों को आवाज़ दी अनुभूति मेलोडी फॉर एवर के सदस्य प्रदीप जॉयस, मोहन, वेणु, विशाल, प्रज्ञा, गायत्री, कुहू और अस्मी ने।

प्रतिभा को सिर्फ एक मंच चाहिए। रविवार को भोजपुर क्लब में आयोजित टैलेंट दिखाओ भोपाल ने यही साबित कर दिया। फादर्स डे स्पेशल इस आयोजन में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने गीत संगीत नृत्य और वाद्य प्रस्तुतियों से माहौल को यादगार बना दिया। कई प्रतिभागियों ने अपने पिता के साथ मंच साझा कर रिश्तों की खूबसूरती को जीवंत किया। किसी ने गीतों के जरिए पिता के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त किया। 30 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में एंकरिंग की जिम्मेदारी राजेश गावा ने बखूबी संभाली।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 150 स्थानों में कार्यक्रम आयोजित हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों में भी दिखा उत्साह। निरोगी काया के लिए योग राजभवन से स्टेडियम और बड़ा तालाब के बोट क्लब तक आसन में राजधानी रही। सुबह की पहली किरण के साथ रविवार की शहर योग के रंग में रंगा हुआ नजर आया। पार्कों से लेकर मंदिर, मैदानों, कॉलोनियों में बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने एक साथ अलग अलग मुद्राओं में योगाभ्यास किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संगठनों की ओर से शहर में 150 स्थानों पर योग के सामूहिक आयोजन किए गए थे, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। योगाभ्यास के साथ लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, तनाव से दूर रहने, समाज में सकारात्मकता लाने का संदेश भी दिया।

राजभवन परिसर में योगाभ्यास के साथ इसके फायदे भी बताए गए। भोपाल मंडल में सामूहिक योगाभ्यास किया गया। बड़ा तालाब में बोट क्लब पर युवाओं ने किए आसन। बड़ा तालाब पर पानी की लहरों के साथ युवाओं ने योगाभ्यास करके सेहतमंद होने का संदेश दिया। एम्स में 600 प्रतिभागियों ने दी योग परफॉर्मेंस की प्रस्तुति। एम्स में आयोजित कार्यक्रम में 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्थान के अधिकारी, संकाय सदस्य, चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ भी इसमें शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने ब्लेसिंग हाउस में योग किया। मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के साथ भी योग किया गया। मरीजों को भी कराया गया योगाभ्यास। इसके साथ ही सैन्य अधिकारियों ने किया प्राणायाम। आपको हम बताएं कि शौर्य स्मारक में 1000 एनसीसी कैडेट्स, सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इन्होंने प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। इसके साथ ही परिक्रमा का आज का अंक ही संपन्न होता है। अब अनुमति दें सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आजाद हिंद में। तारीख, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी कमाते हैं, मगर दूसरों के लिए जीना और अपनी कमाई दूसरों के लिए खर्च कर देना आसान नहीं होता, है ना?
2: हाँ, कहे तो तुम सही रहे हो। आज के समय में ये बात जरा मुश्किल है, पर हमारे देश में ऐसे कई क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मगर दूसरों के लिए कमाना ये कुछ नया लग रहा है। अच्छा, तुम खुद ही बताओ कि किस महापुरुष की तरफ इशारा कर रहे हो?
1: मेरा इशारा है 2 अगस्त 1816 को खुलन जिले के राडोली नामक गांव में जन्मे प्रफुल्ल चंद राय जी की तरफ। वो कोई साधु संत नहीं थे, मगर थे उनसे भी बढ़कर। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं। फारसी के अच्छे विद्वान थे और अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ देशी विद्याओं में भी पारंगत थे।
2: इनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रसिद्ध हेयर विद्यालय में हुई। 1874 में बहुत बीमार पड़ जाने के कारण वे 2 साल तक स्कूल नहीं जा पाए, तो अपने इस अवकाश का इस्तेमाल उन्होंने अपने पिता की लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ने में किया और जल्द ही गोल्डस्मिथ, एडिसन इत्यादि लेखकों की रचनाएं पढ़ डाली।
1: बीमारी के समय से इन्हें जो साहित्य प्रेम हुआ तो वो समय के साथ बढ़ता ही गया। बाद में वे स्कूल और कॉलेज में भी गए। फिर 1882 में एडिनबरा में 6 साल पढ़ाई की और विज्ञान की सबसे बड़ी डिग्री DSC प्राप्त की। वो कहते थे कि भविष्य वैज्ञानिकों के हाथ में ही है, इसीलिए लड़कों को विज्ञान पढ़ना चाहिए, इसी से देश का नए सिरे से निर्माण संभव है। वे मानसिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे।

0: वे भारत के प्राचीन विज्ञान से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखकर ये बात सारे विश्व के सामने रखी भी। अपनी वैज्ञानिक खोजों के कारण वे वैश्विक प्रसिद्धि भी पा चुके थे। उनके लिखे निबंध सारे विश्व में बड़े ध्यान से पढ़े जाते थे। प्राध्यापक के तौर पर उनको बहुत तनख्वाह मिलती थी, मगर वे केवल 40 रुपए अपने पास रख के बाकी सारी तनख्वाह विज्ञान के छात्रों के लिए खर्च करते थे।
1: बहुत सादा जीवन जीते थे, धोती और एक बंद गले का कोट और बिखरे बाल। विज्ञान साधना में इतने लीन कि शादी तक नहीं की। वे कहा करते थे कि मेरी जरूरतें हैं ही कितनी। एक बार पता चला कि अमुक स्थान पे बाढ़ आई है तो बस निकल पड़े उनकी मदद करने, और छात्रों को भी कहा कि इनकी जान बचाओ।
0: सारे देश के आगे ऐसा उदाहरण रखा कि न जाने कितने स्वयंसेवक आगे आ गए, और लोगों ने देखा कि जब इतने बड़े विद्वान ये काम कर रहे हैं तो खुद ब खुद दिल खोलकर चंदा भी दिया। बंगाल में लोग या तो क्रांतिकारियों को मानते थे या फिर प्रफुल्ल चंद जी को। उन्होंने लोगों के सामने ये साबित कर दिया कि चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, मगर अडिग होकर उसका सामना किया जा

0: 1904 में बंगाल सरकार ने उन्हें यूरोप भेजा वहां की प्रयोगशालाओं को देखने। वे यूरोप में भी प्रसिद्ध तो थे ही, लिहाजा जहां भी गए उनका बहुत आदर सम्मान हुआ। मगर उस यात्रा के बाद उनके मन में ये विचार आया कि भारत में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहिए। उन्होंने भारत आके महज 800 रुपए की पूंजी लगा के बंगाल केमिकल्स की स्थापना की, जो कि सही मायने में स्वदेशी नारे को पूर्ण करता था।
1: बंगाल केमिकल्स कैसे एक विराट कारखाना बना, ये एक अलग कहानी है। एक बार सिरप में कुछ खराबी आ गई तो उनके साथियों ने कहा कि हम इसको सुधार लेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर प्रफुल्ल चंद जी ने सारी यानी 200 बोतलें अपने सामने नालियों में डलवा दी। उनका कहना था कि विज्ञान जनता की भलाई के लिए है, उनको लूटने के लिए नहीं।
0: उनको एक बार लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आ जाइए, तो उन्होंने कहा कि यदि देश में 30 रसायन शास्त्री और पैदा हो जाएं, तो मैं राजनीति में आ सकता हूं। उनके कई शिष्य भी थे, कुछ ने तो विश्व स्तर पर बहुत ख्याति भी अर्जित की है, जिनमें रसिकलाल दत्त, नील रतन धर और मेघनाथ साहा प्रमुख हैं। वे जहां भी जाते विज्ञान, स्वदेशी और सांप्रदायिक एकता की बातें करते।
1: प्रफुल्ल चंद्र जी को आधुनिक युग का महर्षि कहा जा सकता है, मगर दुख है कि वे भारत को स्वतंत्र नहीं देख पाए। 16 जून 1944 को विज्ञान कॉलेज में उनका निधन हो गया, मगर अपने निधन के बहुत समय पहले से ही वे स्वदेशी और गांधी जी के चरखा आंदोलन के समर्थक थे। इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि चरखा मिलों के सामने नहीं ठहरेगा, मगर सिर्फ चरखा ही निर्धनों की कुछ सहायता कर सकता है, मिलें तो पूंजीपतियों को ही लाभ देती हैं।
0: वे जीवन भर देश के लिए एक उदाहरण बने रहे, चाहे वो रूप एक वैज्ञानिक, आविष्कारक, चिंतक, शांति दूत या फिर एक स्वदेशी चरखा कातने वाले देशभक्त का था।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। जी हाँ, इस कार्यक्रम के लिए आपको इंतजार करना है बस कुछ पलों का। एक छोटे से अंतराल के बाद हम हाजिर होते हैं ये कार्यक्रम लेकर।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: और अब समय है हमारे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र गौसिया।
0: और आज हम एक बार फिर से आपके सामने शब्दों के शिल्पकार में महान शब्द शिल्पी महाकवि नजीर अकबराबादी की जिंदगी के डायरी के पन्ने खोलने जा रहे हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में उनके शुरुआती जीवन के बारे में बताया था। श्रोताओं, नजीर अकबराबादी स्वभाव से हंसोड़ और तमाशा पसंद इंसान थे। जिंदगी को उन्होंने बहुत करीब से देखा, भोगा और महसूस किया था। वो जिस दुनिया के बाशिंदे थे उसी में मस्त और खुश रहकर उन्होंने उसकी तस्वीरें अपनी रचनाओं में पेश करके उन्हें महफूज कर दिया है। प्रोफेसर आले अहमद सुरूर ने उनकी पूरी शायरी को आदमी नामा कहा है।
1: नजीर ने अपनी नज्म आदमी नामा में आदमी के अनेक रूप पेश किए हैं। उनकी सबसे ज्यादा चर्चित रचना आदमी नामा के कुछ छंद प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि पढ़ने या सुनने वाला नजीर की दोहरी नजर और शायराना फनकाराना सलाहियतों और उनकी शब्दावली से परिचित होकर उर्दू शायरी या हिंदुस्तानी साहित्य में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझकर उनके मकाम और मर्तबे से अवगत हो सके। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी, या आदमी पे जान के वारे है आदमी, और आदमी ही तैग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी,
0: और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी, या आदमी ही लाल जवाहर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया, काला भी आदमी है कि उल्टा है जूतवा, गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा है चांदसा, बदशक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी,
1: मरने पे आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी।
0: वाह, नजीर ने इंसान समाज और जिंदगी की हकीकतों को सीधे सादे अंदाज में आसान आवामी बोलचाल की जबान में गहरी फलसफियाना बातें इस नज्म आदमी नामा की तरह ही दूसरी सभी रचनाओं में इस तरह बयां कर दी हैं कि जितनी बार उन्हें पढ़ते हैं एक नया लुत्फ, एक नई चेतना, एक नया सबक, नई संवेदना, एक नया आयाम, एक नया विवेक, एक नई जागृति और इंसानियत के प्रति प्रेम और सद्भाव की ऐसी भावना जागृत होती है जो हमारे आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करती है, हमारे अंदर के इंसान की मानवता एवं मार्मिकता को झंझोड़ती भी है और अच्छा इंसान बनने के प्रति हमें प्रेरित भी करती है।
1: आम आदमी की जिंदगी समाज और उसकी समस्याओं, खुशियों, गमों, कठिनाइयों और आसानियों, रहम दिली और क्रूरताओं पर नजीर पैनी नजर रखते थे। वो स्वयं इस माहौल और इस परिवेश में जिंदगी बसर कर रहे थे। नजीर ने अपने अनुभवों, एहसासात, ख्यालात और जज्बात को बड़ी सच्चाई और फनकारी के साथ अपनी ही जबान यानी आम आदमी की भाषा में अपनी रचनाओं में ढाल दिया। नज्म आदमी नामा के अलावा उनकी दीगर नज्मों मसलन बंजारा नामा, जोगी नामा, मुफलिसी नामा, जोगन नामा, कौड़ी नामा, पैसा नामा, चपाती नामा, आशिक नामा, हंस नामा के अलावा कल जुग नहीं कल जुग है ये, पेट के लिए, मौत, तिफकी, जवानी, बुढ़ापा, दुनिया, तंदुरुस्ती, आटा दाल, आईना, दुनिया की नेकबंदी, खुशामद नामा वगैरह नज्मों में नजीर का युग सांस लेता नजर आता है।
0: नजीर अकबर आबादी ने जहाँ सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित विभिन्न धर्मों एवं उनके महापुरुषों पर भी बड़ी सच्ची, अच्छी एवं प्रभावशील जो कविताएं लिखी हैं, उनमें हमद बारी ताला या मोहम्मद मुस्तफा, हजरत अली और हजरत सलीम चिश्ती के अतिरिक्त जन्म कन्हैया जी, कन्हैया जी का बालपन महादेव जी का ब्याह, बलदेव जी का मेला, गुरु नानक शाह आदि के साथ साथ विभिन्न

0: अन्न जिस तरह पेश किया उसकी मिसालें उर्दू के किसी और शायर की रचनाओं में इस तरह नजर नहीं आती है।
1: नजीर अपनी तर्ज, अपने रंग ढंग, अपने अंदाज के सबसे अलग और सबसे जुदा शायर थे। नजीर बुनियादी तौर पर नज्म के शायर थे, परंतु उन्होंने उर्दू शायरी की सभी प्रचलित विधाओं को इस्तेमाल करके अपनी गैर मामूली शायराना, फनकाराना, भाषाई ज्ञान, दर्शन और ध्यान एवं अभिव्यक्ति और पेशकश व प्रस्तुतिकरण की सलाहियतों का जिस तरह इजहार किया है दोस्तों, उसके कारण वो और उनकी आवाज़ न केवल दूर से पहचानी जाती है, बल्कि उनकी रचनाएं सभी भाषाओं के लोग बड़े ही चाव और लगाव से पढ़ते और उनसे लुत्फ अंदोज होते आए हैं।
0: नजीर के कलम का कुल्लियात यानी समग्र तौर पर कहा जाए तो एक ऐसे अजायब खाने की तरह है जिसमें भांति भांति की चौंकाने वाली और श्रोताओं को प्रभावित करने वाली सामग्री मौजूद है। वो एक ऐसा गुलदस्ता है जो नाना प्रकार के रंगों के फूलों से सुसज्जित नजर आता है। नजीर की रचनाओं को पढ़कर या सुनकर आभास होता है कि वो केवल निरा कवि या शायर ही नहीं थे, बल्कि इतिहासकार, भाषाविद, कहानीकार, ड्रामा निगार, फलसफी, समाज सेवक, अपनी भाषाओं, संस्कारों, संस्कृति, अपने लोगों, अपने देश से सच्ची मोहब्बत करने वाले फनकार कवि थे।
1: उन्होंने 90 वर्ष से ज्यादा उम्र पाई। गरीबी के बावजूद जीवन और प्रकृति का न केवल भरपूर आनंद उठाया, बल्कि जो कुछ देखा, जाना, समझा और महसूस किया उसे ज्यों का त्यों अपनी कविताओं में ढाल दिया। नजीर को कुदरत ने गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतें अता की थी। उनके पास कहने को बहुत कुछ था। जिस तरह जिंदगी कहीं नहीं ठहरती, उसी तरह नजीर की शायरी भी कहीं भी रुकने या थमने का नाम नहीं लेती थी। वो एक बहते हुए नीर की तरह उसका प्रवाह, उसका बहाव हमें भी अपने साथ बहा के ले जाता है।
0: श्रोताओं, नजीर जिंदगी के तमाशों का अपनी पैनी नजर से अवलोकन करते हैं। वो उनसे खुश भी होते हैं और विचलित भी होते हैं, परंतु कहीं भी अपना आपा नहीं खोते। वो संयम और विवेक के साथ अपनी बात कहते हैं। उनकी बेबाकी, साफ गोई, सच्चाई, सादगी, सहिष्णुता, समानता, समरसता, सहभागिता और समर्पण, सद्भाव की खूबियां हमारा मन मोह लेती हैं और अपना श्रद्धालु बना लेती हैं। नजीर की तरह उर्दू ने ऐसा बेनजीर शायर पैदा नहीं किया जिन्हें हम उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
1: वो कलंदर यानी फकीर और संत शायर थे। लंगोटी में फाग खेलते थे, अपनी गरीबी में मस्त रहते थे। अमीरों की सोहबत या उनके माल दौलत की चमक दमक से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। उनके ये शेर हमें उनकी कहानी सुनाते हैं। शेरों गजल के सिवा शौक ना था कुछ उसे, अपने इसी शगल में रहता था खुश हर जमा। सर्वतो मालो मनाल, हशमतो जाहो जलाल, कोई इसे कुछ कहो हम तो समझते हैं ख्वाब। कसरो महल दिल पजीर, जीनतो जैबे नजीर, कोई इसे कुछ कहो हम तो समझते हैं ख्वाब। मोहब्बत के बाजार में ए नजीर, मैं आजिज गरीब अपनी जान बेचता हूँ।
0: श्रोताओं, नजीर ने अपने आप को किसी बादशाह के दरबार से नहीं जोड़ा। उन्होंने सीधी सादी जिंदगी गुजारी। दुनिया की चमक दमक और ऐशो निशात से प्रभावित नहीं हुए। दुनिया को सराय समझकर एक मुसाफिर की तरह जिंदगी बसर की और अपने शेर में अपने दिल की बात कुछ इस तरह पेश की। यही समझ लो हमें तुम कि एक मुसाफिर हैं जो चलते चलते कहीं थम रहे, रहे न रहे।
1: क्या बात है।
0: उनकी नज्म गुरु नानक शाह में नजीर उनकी खूबियां बयां करते हुए कहते हैं, हैं कहते नानक शाह जिन्हें वो पूरे हैं आगाह गुरु, वो कामिल रहबर जग में है यू रोशन जैसे माह गुरु। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बरल आते हैं दिल खवाह गुरु, नित लुत्फो करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु। इस बख्शीश के इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब सीस नवा इरदास करो और हरदम बोलो वाह, वाह गुरु।
1: क्या बात है, वाह। ब्रजवासी होने के सबब नजीर को श्री कृष्ण से खास लगाव रहा, खास श्रद्धा रही। उसके इजहार उन्होंने अपनी कई नज्मों में किया है। नज्म कन्हैया जी का बालपन में नजीर ने कन्हैया जी के प्रति अपनी श्रद्धा को जिस तरह से पेश की है, मोहन मदन गोपाल हरिवंश मनहरन, बलहारी उनके नाम पे मेरा ये तन ये मन, गिरधारी नंदलाल हरिनाथ गोवर्धन, लाखों किए बनाओ हजारों किए जतन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। एक रोज मुंह में कान्हा ने माखन छुपा लिया, एक रोज मुंह में कान्हा ने माखन छुपा लिया, पूछा जसोदा ने तो वही मुंह बना लिया। मुंह खोल तीन लोग का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।
0: वाह, और इसी के साथ अपनी नज्म बलदेव जी का मेला में अपने जज्बात नजीर ने जिस आस्था के साथ व्यक्त किए हैं, उसके दो छंद यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं। रंग है, रूप है, झमेला है। रंग है, रूप है, झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है।
1: क्या बात
0: है, कहीं यार और कहीं अगयार, कहीं आशिक हैं और कहीं दिलदार, कहीं बस्ती है और कहीं गुलजार, कहीं जंगल और कहीं बाजार, कहीं भक्ति है और कहीं अवतार, उसकी लीलाएं किस से हुई जहार, आप आता है देखने को बहार, आप कहता है यूं पुकार पुकार, रंग है, रूप है, झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है।
1: क्या बात है। नजीर ने होली की रंगीनियों को अपनी नज्म होली की बहारे में खूब खूब बिखेरा है। दोस्तों, नज्म का पहला छंद कुछ इस तरह है। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, और दफके शोर खड़कते हो तब देख बहारे होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारे होली की, महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारे होली की। नज्म दिवाली की ये पंक्तियां भी खूब है। हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ उजाला हुआ दिवाली का, सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मजा खुश लगा दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का।
0: वाह श्रोताओं, आपने देखा ना, नजीर साहब ने से कोई शही नहीं जिस पर उन्होंने लिखा नहीं, हर रंग हर त्योहार के ऊपर उनकी कलम चली है। यहाँ नज्म राखी का त्योहार में नजीर साहब ब्राह्मण बन के राखी बांधने की इच्छा का इजहार कुछ इस तरह करते हैं। फिरे हैं राखियां बांधे जो हर दम हुस्न के तारे, तुनकी राखियों को देख ऐ जान चाह के मारे, पहन जुन्नार और कशका लगा माथे ऊपर बारे, नजीर आया है ब्राह्मण बन के राखी बांधने प्यारे, बंधा लो उससे तुम हंसकर अब इस त्योहार की राखी।
1: क्या बात है। नजीर ने ईद के त्योहार की खुशियों का इजहार अपनी नज्म ईद उल फितर में कुछ इस अंदाज से किया है। रोजों की सख्तियों में ना होते अगर असीर, तो ऐसी ईद की ना खुशी होती दिल पजीर, सब शाद हैं गदा से ले शाह ता वजीर, देखा जो हमने खूब तो सच है मियां नजीर, ऐसी ना शब बारात ना बकरा ईद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। नज़ीर को शहर आगरा और उससे संबंधित सभी चीज़ों से ख़ास लगाव रहा। उन्होंने गर्व के साथ अपने संबंधों को इस तरह से बयान किया है। आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फ़कीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है।
0: भाई वाह श्रोताओं, नजीर की रचनाओं में अरबी, फारसी, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, अवधी एवं ब्रिज भाषा का समावेश इस तरह नजर आता है कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव ही नहीं है। नजीर का कलाम भारत की मिली जुली सेकुलर गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा आदर्श नमूना है कि जिसके प्रवाह में सभी धर्मों एवं संस्कृति के धारे एक साथ बहते नजर आते हैं। नजीर नज्म के शायर हैं, परंतु उनकी गजलों में भी आम अंदाज से बात कहने का जो रंग या ढंग मिलता है, वो उन्हें केवल उनके समकालीन शायरों में ही नहीं वरन उनके बाद के शायरों में भी एक नई पहचान प्रदान करता है।
1: उर्दू गजलों के महबूब के लिए पुरलिंग का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नजीर ने अपनी गजलों में कहीं कहीं उसे स्त्रीलिंग के बतौर इस्तेमाल किया है। नजीर की गजलों में उनकी नज्मों की तरह सादगी नहीं मिलती, उनकी गजलों में फिक्र फलसफे की गहराई भी है और तंज का कटाक्ष भी मौजूद है। जैसे सहरा में मेरे हाल पे कोई भी न रोया, सहरा में मेरे हाल पे कोई भी न रोया, गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। कितनी गहरी बात कह रही है। शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम, देखकर कुर्ती गले में सब्ज धानी आपकी, देखकर कुर्ती गले में सब्ज धानी आपकी, धान के भी खेत ने अब आन मानी आपकी। यूं तो हम ते यूं ही कुछ मिसले अनारो महताब, जब हमें आग दिखाई तो तमाशा निकला।
0: भाई वाह, नज्मों में सवालात और संवाद की गुंजाइश तो होती है, परंतु गजल जैसी सूक्ष्म एवं तंग दायरे की विधा में संवाद या सवालात कायम करके शोखी, चंचलता, सरसता और बहते नीर की सी रवानी को बरकरार रखना हर शायर के बस की बात नहीं है। नजीर ने अपनी काव्य दक्षता से इस मुश्किल काम को कुछ इस तरह आसान कर दिखाया है। कहा जो हमने हमें दर से क्यों उठाते हो, कहा जो हमने हमें दर से क्यों उठाते हो, कहा किस लिए तुम यहाँ जो गुल मचाते हो, कहा लड़ाते ही क्यों हमसे गैर को हमदम, कहा कि तुम भी तो हमसे निगाह लड़ाते हो, कहा जो हाल दिल अपना तो उसने हंस हंस कर कहा गलत हैं ये बातें जो तुम बनाते हो,
1: क्या बात,
0: कहा कर्ज करें हम पे जो गुजरता है, कहा कर्ज करें हम पे जो गुजरता है, कहा खबर है हमें क्यों जबां पे लाते हो, कहा कि हम नहीं आने के, या तो उसने नजीर कहा कि सोचो तो क्या आपसे तुम आते हो।
1: क्या कहने क्या कहने, नजीर के कलाम में शोखी और चंचलता के मिसालें एक खास अंदाज खास लहजे में मिलती हैं। नमूने के लिए उनके गजल के कुछ शेर कुछ इस तरह से हैं। दिखा कर एक झलक दिल को निहायत कर गया बेकल, परी रू तुंद खू सरकश हटीला चुलबुला चंचल, वो आरिज और जबी तांबा की हो शर्मिंदा देखकर, कमर खुर्शीद जोहरा शम्मा शोला मुश्तरी मशल, कड़े बुंदे छड़े छल्ले अंगूठी नौरतन की ही कल, सरापा पुरफरेब ऐसा के जाहिर जिसकी नजरों से, शरारत शोखी अयारी तरह फुर्ती दगा छलबल, नजीर एक उम्र इशरत हो मिले ऐसा परी पैकर, नजीर एक उम्र इशरत हो मिले ऐसा परी पैकर, अगर एक आं अगर एक दम अगर एक छन अगर एक पल।
0: वाह, श्रोताओं नजीर ने उर्दू हिंदी संस्कृत और कुछ फारसी के शब्दों के अतिरिक्त आगरे में और उसके आसपास बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों के शब्दों का इस्तेमाल भी बड़ी तन्मयता आत्मीयता समरसता और बरजस्ता अंदाज में करके अपनी रचनाओं को जिस तरह नया रूप स्वरूप प्रदान किया है, नए मायने पहनाए हैं, उससे उर्दू शायरी की शब्दावली में न केवल गैर मामूली इजाफा हो गया है बल्कि ऐसी मिसाल किसी और उर्दू शायर के यहाँ इस तरह नजर नहीं आती। उनकी नज्म तिलिस्म विसाल के टीप के कुछ बंद यहाँ हम पेश कर रहे हैं।
1: देह सुमंती औजरी मुक्ति चंद लजाए, भोई छुगनी तान की कमलन बान चलाए, भेंट भई जाती कहीं नैनन असुआ लाए, है कोई ऐसा महंत जो पीतम मंदिर बताए, पलक कटारी मार के हृदय रक्त बहाए, रख के आह साम्रत जोदा के द्वारे जाए, पीतम या मनमोह के किन्हो मान गुमान, बिन देखे वा रूप के मेरे किलपत प्राण मेरे किलपत प्राण। नजीर बहुत बड़े तमाशाबाज भी थे दोस्तों, उनकी नजर में ये दुनिया एक खूबसूरत तमाशागाह थी। नज्म दुनिया भी क्या तमाशा है में उन्होंने अपने ख्यालात को कुछ इस तरह से वर्णित किया है। दो बंद सुन लीजिए। ये जितना खल्क में अब जा बजा तमाशा है, जो गौर की तो ये सब एक का तमाशा है, न जानो कम इसे यारो बड़ा तमाशा है, जिधर को देखो उधर एक नया तमाशा है, गरज में क्या कहूँ गरज में क्या कहूँ, दुनिया भी क्या तमाशा है, जबा है जिसके इशारे से वो पुकारे है, जो गूंगा है वो खड़ा फारसी बघारे है, कुला हंस की कागा खड़ा उतारे है, उछल के मेंढ की हाथी के लाथ मारे है, गरज में क्या कहूँ गरज में क्या कहूँ, दुनिया भी क्या तमाशा है।
0: वाह वाकई, गरज में क्या कहूँ दुनिया भी क्या तमाशा है। श्रोताओं नजीर स्वयं कर्मठ व्यक्ति थे, उन्होंने इस संसार को कलयुग नहीं करजुग की संज्ञा देते हुए अपनी नज्म कलजुग नहीं करजुग में बड़े पते की बातें कुछ इस तरह बयान की हैं। दुनिया अजब बाजार है, दुनिया अजब बाजार है, कुछ जिन से यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है बद से बदी की बात ले, मेवा खिला मेवा मिले फल फूल दे फल पात ले, आराम दे आराम ले दुख दर्द दे हाफात ले, कलजुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात को ले, क्या खूब सौदा नकद है इस हाथ दे उस हाथ ले।
1: क्या बात है, वाह। नज़ीर ने दुनिया, इंसान, समाज और अपने परिवेश का गहन अध्ययन किया। इन चीज़ों से संबंधित उनका अपना फ़लसफ़ा, अपने विचार, अपना अनुभव रहा है, जिसे उन्होंने पूरी सच्चाई और बेबाकी के साथ अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। यूं तो उनकी हर रचना, हर कविता एक खुला दर्पण, खुला पैगाम है, परंतु वो नज़में जो कि नज़ीर को उर्दू या हिंदुस्तानी साहित्य में सबसे आगे की कतार में लाकर खड़ा कर देती हैं, उनमें आदमी नामा, बंजारा नामा, दुनिया, मुफलिसी, रोटी नामा, तंदरुस्ती, खुशामद नामा वगैरह, उनके नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। नज़्म बंजारा नामा में कहे गए उनके विचार बड़े खरे, सच्चे और विचारणीय हैं।
0: नज्म बंजारा नामा के कुछ शेर आप मुलायजा कीजिए, जिन्हें पढ़कर या सुनकर हर संवेदनशील व्यक्ति की रूह में कंपन पैदा होने लगता है। टुक हिरसो हवा को छोड़ मिया, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बुधिया भैंसा बैल शुतुर, क्या गोई पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा,
1: क्या
0: सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। गर तू है लक्की बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ऐ गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है, क्या शक्कर मिश्री कंदगिरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्का सौंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गौन तेरी ढल जाएगी, एक बुधिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आवेगी, ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जावेगी, पूत जवाई बेटा क्या बंजार इन पास न आवेगी, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा।
1: क्या बात है, वाह। नज़ीर अकबर आबादी सच्चे अवामी शायर थे दोस्तों। उनकी नज़मों में आम आदमी के जीवन का दुख दर्द, सुख चैन, उनके युग के हालात, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक और धार्मिक संस्कार, हिंदुस्तान के मौसमों और हिंदुस्तानियों के मामलातों, मसाइल, गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे का चित्रण और वर्णन सच्चाई, फनकारी के साथ किया गया है। नज़ीर अकबर आबादी के कलाम की प्रासंगिकता, लोकप्रियता, मन भावकता हर युग में महसूस की जाती रही है और भविष्य में महसूस की जाती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, आज हमने ये दूसरा एपिसोड किया, ये दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत किया नज़ीर अकबर आबादी साहब के जीवन पर। फिलहाल आज दीजिए इजाजत। कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में फिर किसी महान शब्द शिल्पी के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन प्रोफेसर मोहम्मद नोमान खान, और इसे आपके सामने पेश किया आपका रेडियो मित्र यानी मैं संदीप शर्मा।
1: दोस्तों, आपकी रेडियो मित्र यानी मैं गासिया खान।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: शब्दों के शिल्पकार, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल, देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिष्या भगिनी निवेदिता स्वामी जी के सपनों को साकार करने और उन्हें मूर्त रूप देने की ख्वाहिश लिए भारत आई और थोड़े ही दिनों में भारत के रंग में रंग गई।
1: 25 मार्च का दिन मार्गरेट के लिए अनोखा था, क्योंकि उस दिन उसे दीक्षा ग्रहण करनी थी। स्वामी जी हमेशा की तरह सवेरे ही आ गए और उनके साथ सब लोग मठ गए। मठ उस वक्त नीलांबर मुखर्जी के उद्यान भवन में था। स्वामी मार्गरेट को पूजा घर ले गए और जीवन के नए पर्व में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम उसे भगवान शिव की पूजा करना सिखाया गया। इसके बाद उसे ब्रह्मचर्य संस्कार में दीक्षित किया गया और उसे निवेदिता का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उसे भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कहा गया। तब स्वामी जी ने उससे भावावेश में रुंधे हुए स्वर में कहा,
2: जाओ और उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने 500 बार जन्म लेकर अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और फिर बुद्धत्व प्राप्त किया।
0: मार्गरेट जो अब निवेदिता बन चुकी थी, उसके लिए ये एक सुखकारक तथा अति आनंददायक सुबह थी। अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण दिनों का उल्लेख करते हुए 17 मार्च 1904 को निवेदिता ने कुमारी मैकलाउड को लिखा था,
3: 6 वर्ष पहले इसी तारीख को भी आज के समान ही गुरुवार था, मैंने और तुमने पूजनीय श्री श्री माँ के दर्शन किए थे और फिर हम दोनों श्री माँ के निवास स्थान से अपने घर लौट आए थे। समय के चक्र ने फिर हमें उसी अविस्मरणीय दिन की पवित्र स्मृति दिला दी है। अगले शुक्रवार 25 मार्च को उस दिन की वर्षगांठ है। उस दिन मुझे पहली बार निवेदिता का नाम दिया गया था। हम लोग इस 25 मार्च को 7वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये बस बिना किसी दोष के, बिना किसी बाधा के अखंड चलता रहे।
1: बेलूर की वो पुरानी सी कुटिया जो गंगा के किनारे थी, जहाँ त्रिमूर्ति रहती थी, निसंदेह एक स्वर्ग के समान मनोरम थी। एक छोटा सा घर जिसके अंदर एक अटूट एकता और अपूर्व शांति का अनोखा समन्वय था, तथा बाहर जहाँ की प्रत्येक वस्तु अपना अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थी।
0: स्वामी जी लगभग रोज ही सुबह यहाँ आ जाते, कभी अकेले तो कभी अपने सन्यासी बंधुओं के साथ, कभी किसी पेड़ की घनी शीतल छाया के नीचे तो कभी बरामदे में बैठकर वे उनसे बहुत सारी बातें किया करते, जिनमें विषय भिन्न भिन्न रहते, पर इन बातों का केंद्र बिंदु केवल एक ही विषय पर स्थित रहता, और वो विषय है भारत, महान भारत। उनकी बातों का कोई एक विशेष अनुक्रम नहीं रहता, समय या विषयानुरूप तर्कों के अनुसार उनकी बातें विभिन्न विषयों पर होती। जिस दिन जैसी उनकी इच्छा होती, वो बोलने के लिए अपनी इच्छानुरूप विषय चुनते। क्या उचित है, क्या आदर्श हैं, इन बातों पर ही उनके विचार केंद्रित नहीं होते थे, बल्कि जो बुरा है, निकृष्ट है तथा जड़ से उखाड़ फेंकने लायक है, उन कुरीतियों पर भी वे बहुत ही क्षोभित होकर बोलते।
3: वे एक अति विचारवान बुद्धिमान वक्ता थे, उनकी बोलने की कला असामान्य थी। जब वे भारत के उज्जवल इतिहास के बारे में बोलते तो ऐसा लगता मानो वर्तमान का लोप हो गया है और श्रोता भूतकाल के उन क्षणों में पहुंच जाते। भारत का महान इतिहास श्रोताओं के समक्ष सजीव हो उठता। वे भारतीय पुराणों के देवी देवताओं के बारे में बोलते, महान धार्मिक उपदेशकों के बारे में बताते, देश के महान संतों तथा देशभक्तों के बारे में बतलाते। राजपूत, सिख, मराठों के संतों की महानता तथा देशभक्तों की वीरता का वर्णन करते। भारत भूमि की भौगोलिकता, समाजशास्त्र, विज्ञान, तर्कशास्त्र, आचार विचार, अध्यात्म विज्ञान, ये सब उनकी बातों के विषय होते। परंतु जो भी, जैसा भी वे बोलते थे, वो भारत के बारे में ही होता था। वास्तव में भारत जैसा था या अभी जैसा है, जैसा कि उनसे सुना था, ऐसा लगता था मानो पुराणों में वर्णित महान भारत खुद अपनी कहानी स्वामी जी की जुबानी बता रहा हो।
1: जिस दिन निवेदिता की दीक्षा हुई उस दिन स्वामी जी इन तीनों को एक छोटे से नाव पर गंगा में नौका विहार के लिए ले गए और उनके सामने स्वामी जी ने अपना हृदय खोल कर रख दिया। उन्होंने इन तीनों महिलाओं को बताया कि सत्य के प्रति ये उत्कंठा उन्होंने अपने गुरु से पाई है। उन्हें निवेदिता से खूब आशाएं हैं। उनकी जनसाधारण की सेवा करने की इच्छा और उसके ग्रहण किए हुए संन्यास धर्म ने उसे वो योग्यता प्रदान की है जो उन्होंने भारतीय स्त्रियों की उन्नति के लिए कार्य करने वाली महिला में चाहा था। पर साथ ही वे चाहते थे कि निवेदिता सबसे पहले उन महिलाओं के बारे में सब कुछ जान ले और उन्हें अच्छी तरह से समझ ले जिनके लिए उसे ये कार्य करना है। ये बहुत ही आवश्यक था कि जिन महिलाओं को उसे सिखाना है उनकी आंखों से उनके दृष्टिकोण से दुनिया को निवेदिता देखना सीखे।
0: इन विदेशी भक्त महिलाओं तथा मठ के वरिष्ठ सन्यासी बंधुओं के बीच मधुर संबंध विकसित हुए और निवेदिता को तो स्वामी जी की आध्यात्मिक मानस पुत्री माना जाता था। अतः इन सन्यासियों ने निवेदिता पर अपना पूरा प्यार पूरी उदारता के साथ उड़ेल दिया था।
1: इसी बीच नई जगह पर मठ के नए भवन निर्माण के कार्य की शुरुआत हो चुकी थी। 7 अप्रैल को पूजनीय श्री श्री माँ मठ में आई। मठ उस वक्त नीलांबर मुखर्जी के घर पर था। वहाँ श्री माँ ने रामकृष्ण देव की पूजा की। शाम को वे नाव द्वारा इस नए बन रहे मंदिर भवन को देखने के लिए आई। धीरा माता, जया और निवेदिता जो इस निर्माणाधीन मठ के क्षेत्र में प्रथम निवासी थे उन्होंने श्री माँ को मंदिर के निर्माण स्थल का भ्रमण कराया।
0: इसी वक्त कलकत्ता प्लेग की चपेट में आ चुका था। ये महामारी कलकत्ता में अपना प्रचंड विनाशकारी रूप दिखा रही थी। तब 3 मई को स्वामी जी दार्जिलिंग से वापस आए तथा तुरंत ही प्लेग पीड़ितों की सहायता तथा प्लेग उन्मूलन के कार्यों में जुट गए। इसी से संबंधित एक सूचना पत्रक निवेदिता ने अंग्रेजी में लिखा जिसका अनुवाद बंगाली तथा हिंदी में किया गया। ये सूचना पत्रक जनसाधारण में बांटे गए जिसमें कलकत्ता वासियों से अनुरोध किया गया था कि वे इस महामारी से न डरें बल्कि हिम्मत के साथ उसका सामना करें तथा अपने घरों को छोड़कर न भागें। रोगियों की चिकित्सा तथा सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था भी की गई। स्वामी जी ने घोषणा की कि यदि धन की अधिक आवश्यकता पड़ी तो वे जनसाधारण की सेवा के लिए मठ के लिए अभी हाल में खरीदी गई जमीन को भी बेच देंगे, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वामी जी ने जनसाधारण से पीड़ितों की सहायतार्थ आर्थिक मदद की अपील की। स्वामी जी के द्वारा किए गए निवेदन का अच्छा सहयोग मिला तथा सहायता राशि जमा होने लगी।
1: प्लेग जब नियंत्रण में आया तब स्वामी जी अपने साथियों की एक बड़ी टोली के साथ अल्मोड़ा रवाना हो गए। उनके साथ स्वामी तुरियानंद, निरंजनानंद, शारदानंद, स्वरूपानंद, श्रीमती बुल, कुमारी मैकलाउड, श्रीमती पैटरसन जो कि एक अमेरिकन वकील की पत्नी थी तथा निवेदिता थी।
0: इन बीते हुए दिनों में निवेदिता तथा उसकी सखियों ने भारत के बारे में बस सुना ही था, परंतु अब भारत भ्रमण के साथ ही उनके प्रत्यक्ष दर्शन की शुरुआत हुई। इससे इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला।
1: निवेदिता के द्वारा लिखा हुआ मास्टर एज आई सॉ हिम और नोट्स ऑन सम वंडरिंग्स विद स्वामी विवेकानंद, इन दोनों ग्रंथों में निवेदिता ने इस प्रवास का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। उनकी ऐतिहासिक समझ, कलात्मक रुचि और लेखन क्षमता ने उन्हें इस लायक बना दिया कि वे अपने सभी अनुभवों को उनके पूरे वैभव के साथ पुनर्जीवित कर सके। इस तरह इन क्षणों का अपने ग्रंथों में वर्णन कर उसने महान स्वामी विवेकानंद के साथ बिताए गए अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को जीने में औरों को भी हिस्सेदार बनाया है।
0: लाहौर से स्वामी 18 अक्टूबर को कलकत्ता पहुंचे। श्रीमती बुल, कुमारी मैकलाउड तथा स्वामी शारदानंद के साथ निवेदिता लाहौर, दिल्ली, आगरा आदि जगहों को देखने हेतु गई।
1: कलकत्ता लौटने के लिए अधीर निवेदिता ने अपने साथियों का साथ बीच में ही छोड़ दिया और वो बनारस होते हुए 1 नवंबर को कलकत्ता पहुंची। उस वक्त स्वामी जी बाग बाजार के नंबर 57 रमाकांत बोस पथ पर बलराम बोस के घर में रहते थे। निवेदिता सीधे उन्हीं के पास पहुंची।
0: जल्द ही निवेदिता के लिए वहीं पड़ोस में एक अलग मकान खोज लिया गया जो पूर्व की ओर सड़क के दूसरी ओर था। वो मकान था 16 बोसपाड़ा गली का घर जो आज भी वहां स्थित है। वे अलग घर में रहने लगी पर अभी भी वे अपना दोपहर का समय श्री शारदा माँ के सानिध्य में बिताती। उस वर्ष गर्मी के दिनों में माँ के आदेशानुसार तथा विशेष आग्रह पर वे रात को सोने के लिए भी श्री माँ के घर आने लगी। पर इस बार उसे कोई अलग कमरा नहीं दिया गया, बल्कि वो भी दूसरी अन्य महिलाओं के साथ वहाँ के साधारण से तथा ठंडे बरामदे में सोती। वहाँ चटाइयों, तकियों और मच्छरदानियों की लंबी कतार होती तथा सभी बरामदे के नंगे लाल फर्श पर सिर्फ चटाई डालकर सोते। वहीं निवेदिता को भी स्थान मिलता।
1: निवेदिता के लिए ये पहला ही मौका था जब वे किसी हिंदू परिवार में रह रही थी और उनकी सादगी से परिपूर्ण पर जटिल जीवन प्रणाली को निकट से देख रही थी। एक हिंदू का जीवन हजारों छोटी छोटी रूढ़ियों और परंपराओं पर आधारित रहता है। स्वामी ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ये छोटे छोटे संस्कार जिन पर हिंदू जीवन आधारित है उनमें से कोई भी तुच्छ नहीं है। उनमें से कुछ संस्कार अनावश्यक जरूर हैं, फिर भी आवश्यक और अनावश्यक संस्कारों में फर्क करना हमें आना चाहिए। इस तरह की शिक्षाओं और खुद की बुद्धिमत्ता तुरंत ग्रहण करने की क्षमता के कारण निवेदिता ने थोड़े ही दिनों में जिनके परिवार में वे शामिल हुई थी उन सामान्य भली और समर्पित महिलाओं की जीवन शैली, आचार विचार और उनके जीवन मूल्यों को बड़ी ही सहजता से समझ लिया था।
0: 8-10 दिन श्रीमा के घर रहकर निवेदिता उस घर में रहने गईं जो उनके लिए ठीक किया गया था। ये घर एक स्वच्छ तथा शांत गली में था। वहाँ की विषमता तथा अव्यवस्था में एक प्रकार की मोहकता थी।
3: मेरी नजर में तो मेरा घर बहुत ही मोहक है। उसके आकर्षण से बंधा मेरा मन यहाँ प्रसन्न है। आगे तथा पिछवाड़े दो आंगन थे, दूसरी मंजिल के सीमित कमरे, प्राचीन पद्धति की बनी खुली छतें, विभिन्न विभिन्न ऊंचाइयों पर बनी हुई थी। प्राचीन हिंदू सभ्यता के घरों का उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ ये घर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना था। पूरे घर में कांच का एक छोटा टुकड़ा भी दिखाई नहीं पड़ता था। लकड़ियों तथा दरवाजों के निचले हिस्से में लोहे की तथा ऊपरी हिस्से में लकड़ी की सलाखों से सुरक्षा लाई गई थी। और इस तरह वो कमरा जो मैं अभ्यास और पढ़ने हेतु प्रयोग में लाती थी सुबह की सुनहरी धूप में भरा रहता था और मेरी गहरी हरी रंग की बांस की तीलियों से बुनी चटाई को एक आनंददायक गर्माहट प्रदान करता था। मेरे सोने के कमरे को चांद की शीतल किरणें हमेशा शीतल बनाए रखती थी।
1: इस घर में निवेदिता ने अपना पवित्र जीवन यापन शुरू किया। अपने घर को व्यवस्थित रखने में, उसका सुचारू रूप से संचालन करने में पहले तो उसे कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन दिनों की स्मृति को बड़ी प्रसन्नता से याद करते हुए निवेदिता ने बाद में लिखा था,
3: यहाँ के शुरुआती जीवन में मेरे सामने कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आई। सबसे पहले तो एक इंग्लिश महिला के लिए घर ढूंढना सरल नहीं था। जब घर मिल गया तो घरेलू कामकाज के लिए सेविका मेरे लिए कैसे मिलेंगी, ये प्रश्न उपस्थित हो गया। अंत में कुछ हफ्तों के बाद एक बहुत ही वृद्ध महिला काम करने के लिए मिल सकी। मेरे उससे उम्र में बहुत छोटी होने के बावजूद वो मुझे माँ कहती थी और उनके मुझसे उम्र में आधी होने के बावजूद मुझे उन्हें पुत्री या जी कहकर संबोधित करना पड़ता था। वो वृद्ध सेविका पूरे घर को झाड़कर धो पोंछ कर बड़ी कुशलता से स्वच्छ करती थी। साथ ही खास बताए गए वक्त पर नहाने के लिए तथा पीने के लिए पानी उबाल कर रखती। और पता नहीं क्यों उसकी एक शर्त थी, वो ये कि मैं उसकी रसोई में घुसूंगी नहीं और पानी तथा अग्नि या चूल्हे को छूंगी नहीं। इसके बावजूद भी मुझे कभी भी मांगने पर तुरंत गर्म पानी नहीं मिल पाता था क्योंकि हमारे पास चूल्हा नहीं था। चूल्हा बनाने हेतु जो आवश्यक वस्तुएं लगती थी उनका दाम जब मैंने पूछा तो 6 पैसे की भारी रकम मुझे बताई गई, जिसे जुटाना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं था। पैसे मिलते ही मेरी विश्वस्त सेविका ने तुरंत बाजार जाकर ईंटें, काली चिकनी मिट्टी तथा कुछ लोहे की सलाखें जुटाई तथा अपने ही हाथों से उसे जैसा चाहिए था वैसा चूल्हे का निर्माण बड़ी ही कुशलता और सुघड़ता के साथ किया। उस चूल्हे को सुखाने तथा काम योग्य बनाने में कुछ समय तो जरूर लगा पर अंततः ये कार्य पूर्ण हुआ। उस दिन से चाय मेरे ही कक्ष में बनती थी। जब चाय बनती तो बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में मेरी वृद्धा पुत्री केतली के सामने जमीन पर बैठती और इस कौतूहल से देखती मानो कोई अनोखी चीज उस चाय पात्र से बाहर निकलने वाली हो। जैसे ही मैंने कप भर चाय उड़ेल कर गर्म पानी के लिए वो केतली झी को पकड़ाई, वैसे ही मुझे आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा, क्योंकि मुंह से कुछ विचित्र शब्द निकालते हुए वो अंदर के बरामदे में गायब हो गई। और कुछ क्षणों के बाद जब वो पुनः बाहर आई तो सिर से पैर तक ठंडे पानी से सराबोर थी। जिस केतली की चाय में पीने वाली थी उसे छू लेने से पहले उसने पूर्ण स्नान करना उचित समझा।
0: इस तरह इस नए घर और नए वातावरण में निवेदिता ने नवंबर 1898 से जून 1899 तक का समय बड़ी ही प्रफुल्लता तथा शांति से बिताया। 14 नवंबर सोमवार से पाठशाला का शुभारंभ हुआ। प्रथमतः आसपास की कुछ लड़कियों ने इस पाठशाला में प्रवेश लिया। लड़कियों को पाठशाला में लाने ले जाने के लिए एक सेविका की नियुक्ति की गई। पाठशाला के पहले ही दिन स्वामी जी स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी विरजानंद तथा स्वामी सुरेश्वरानंद ने इस स्कूल को भेंट दी।
1: इसके बाद तो निवेदिता ने अपनी नई पाठशाला के कार्यों में अपने आप को बहुत उत्साह और तन्मयता से झोंक दिया। पढ़ाने के साथ साथ वे लड़कियों को चित्रकला सिलाई और मूर्तिकला भी सिखाने लगी। लड़कियां भी सब कुछ बड़ी तन्मयता और मेहनत से सीखती। उनके इस तरह के परिश्रम और हस्त कौशल को देखकर निवेदिता बड़ा गर्वित महसूस करती।
0: उन दिनों विजातीय लोगों का बनाया हुआ भोजन खाना या विजातियों के साथ बैठकर भोजन करना निषिद्ध माना जाता था। उन दिनों प्रचलित कुछ विशेष कुसंस्कारों में से ये एक था। हिंदुओं की इस अस्पृश्यता वाले रूढ़िवादी ढकोसलों की स्वामी जी हमेशा ही आलोचना किया करते थे।
1: एक और मजेदार घटना घटी। एक दिन स्वामी जी निवेदिता स्वामी योगानंद और अपने शिष्य के साथ अलीपुर के प्राणी उद्यान को देखने गए। उद्यान के मुख्य व्यवस्थापक ने इन लोगों का हार्दिक स्वागत किया। बगीचे के निरीक्षण के पश्चात उन्होंने स्वामी जी को चाय पान के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी और निवेदिता ने वहां चाय और नाश्ता लिया। इसी वक्त स्वामी जी के ध्यान में ये बात आई कि जिस प्लेट से निवेदिता ने मिठाई उठाकर खाई है उस प्लेट से मिठाई लेने के लिए उनका वह शिष्य झिझक रहा था। अतः स्वामी जी बार बार उसे मिठाई लेने का आग्रह करते रहे। अंत में थोड़ा व्याकुल होकर और बड़े उदासीन मन से उस शिष्य ने उस प्लेट से मिठाई ले ही ली। अब स्वामी जी ने एक ग्लास में से थोड़ा सा पानी पिया और वही ग्लास अपने शिष्य की ओर बढ़ा दिया और उसे पानी पीने का इशारा किया। अब उसके पास पानी पीने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी और उसका उल्लंघन करना यानी गुरु के अपमान करने जैसा ही था। अतः उसने वो पानी पी ही लिया। वापस लौटते वक्त स्वामी जी अपने शिष्य को निवेदिता के साथ खाने पीने के कारण चिढ़ाने लगे और सबको बताने लगे कि शिष्य ने निवेदिता का छुआ खा पी लिया। साथ ही वे उसे ये कहकर चिढ़ाने लगे कि अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। जब तक ये प्रायश्चित नहीं कर लेगा तब तक इसे कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा। ये सुनकर सब साथी दिल खोल कर हंसने लगे और शिष्य ने भी उनका साथ दिया।
0: यद्यपि दीक्षा विधि नहीं हुई थी तथापि निवेदिता को स्वामी जी के कार्यों में शामिल होने की कोई मनाही नहीं थी और न ही कोई रुकावट। अपने कार्य के संबंध में स्वामी जी ने निवेदिता को एक बार कहा था,
2: मेरा कार्य सिर्फ श्री राम कृष्ण का ही कार्य नहीं है और ना ही सिर्फ वेदांत का कार्य है, बल्कि मुझे मेरे बंधुजनों में मनुष्यत्व उत्पन्न करना है, तेजस्वी पौरुष निर्माण करना है, यही मेरे कार्य का मुख्य उद्देश्य है।
3: मैं इस कार्य में आपकी मदद करूंगी।
2: मैं जानता हूं।
1: जैसा कि निवेदिता ने कहा था कि वह अपनी पूर्ण शक्ति के साथ सामर्थ्य के साथ उनके कार्य में मदद करेगी, स्वामी जी को पूर्ण विश्वास था। इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही मानो निवेदिता ने स्वामी जी के कार्य का पूर्ण भार अपने कंधों पर ले लिया। उनके जीवन चरित्र और कार्यों को देखते हुए यह बात पूरी तरह से सिद्ध होती है कि किस तरह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने अपने वचन को निभाया।
0: विदेश में जब वे एक बार बीमार पड़े तो उन्होंने निवेदिता से कहा था,
2: कभी मत भूलो पहले स्त्रियों और फिर बाद में और लोग, इन शब्दों को हमेशा याद रखना।
0: स्कूल धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा था और अब वहां पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी थी। पर कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की व्यवस्था किस तरह की जाए, इस बारे में स्वामी जी चिंतित थे।
1: इस तरह की कठिन आर्थिक परिस्थिति में निवेदिता को अकेला छोड़ना स्वामी जी को अनुचित भी लग रहा था। इसके लिए सिर्फ एक ही पर्याय था और वो था कि निवेदिता स्वामी जी के साथ यूरोप और अमेरिका के प्रवास में साथ जाएं और वहां स्कूल के लिए निधि जमा करें। इस विषय पर स्वामी जी ने निवेदिता से निजी तौर पर वार्तालाप किया। भारत से तो अधिक धन मिलने की उम्मीद उन्हें नहीं थी और यदि 10 या 20 लड़कियों के लिए छात्रावास न बनाया गया तो निवेदिता की इतने दिनों की मेहनत व्यर्थ हो सकती थी।
0: पूरा ग्रीष्मकाल इसी तरह की समस्याओं और उनका हल ढूंढने में निकल गया, पर साथ ही एक निराशाजनक अनुभव निवेदिता को हुआ। उस जमाने में जैसे ही लड़कियां थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर युवावस्था को प्राप्त होती, ऐसी प्रत्येक प्रियदर्शनी कन्या का विवाह उसके माँ बाप कर देते। विवाहित कन्या का पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करना उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं आता और इस तरह पढ़ाई पूरी किए बिना लड़कियां शादी के बंधन में बंध कर निवेदिता से दूर चली जाती और निवेदिता उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती।
1: अतः अब स्वाभाविक ही निवेदिता का ध्यान विधवा और निराश्रित महिलाओं की ओर गया, जिन्हें शिक्षित कर प्रचारिका के रूप में तैयार किया जा सकता था। उसी तरह निराश्रित और विधवा महिलाओं के लिए एक आश्रम बनवाने की स्वामी जी की कल्पना भी अब निवेदिता के मन को अधिकाधिक आकर्षित करने लगी। यदि इस तरह समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए आश्रम न बनवाया जाए तो निवेदिता के अभी तक के किए गए प्रयत्न व्यर्थ हो जाते। जब निवेदिता ने अनुभव किया कि स्कूल में कुछ भी ठोस कार्य नहीं हो पा रहा है और न ही उसकी इच्छा अनुसार स्कूल की प्रगति ही हो रही है, तब उसने बड़ी ही स्पष्टता से स्वामी जी से बातचीत की और स्वामी जी ने उसकी निराश मन स्थिति को समझा। वे बोले कि निवेदिता को महिलाश्रम के लिए निधि जमा करने के लिए यूरोप जाना चाहिए और जाने के पहले अपने और स्वामी जी के अधूरे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए।
0: यहाँ इस बात को ध्यान में रखना होगा कि स्वामी जी की इच्छा अनुसार विधवा श्रम शुरू करने का कार्य निवेदिता अपने जीवन के अंत तक पूरा नहीं कर सकी, पर सुधीरा दीदी जिन्होंने बाद में स्कूल के कार्य की बागडोर संभाली, उन्होंने बाद में एक आश्रम शुरू किया जिसका नाम मातृ मंदिर रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर शारदा मंदिर रखा गया। आज तक स्कूल से जुड़े हुए छात्रावास का यही नाम प्रचलित है। इस तरह स्त्रियों के लिए मठ की कल्पना का साकार रूप अस्तित्व में आया, उसका बीज स्वामी जी ने बोया था। भले ही इसे पूर्णतः मठ का स्वरूप पाने में बहुत समय लगा, पर फिर भी स्त्रियों के मठ के संबंध में स्वामी जी का स्वप्न साकार हुआ।
1: गृह उद्योगों का एक केंद्र बेलूर मठ में स्थापित हो, यही स्वामी जी की इच्छा थी। जहाँ निवेदिता के स्कूल की छात्राएं अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाएं एवं इस तरह की चीजें बनाकर बिक्री हेतु बाजार में भेजें। इस तरह का प्रस्ताव स्वामी जी ने निवेदिता के समक्ष रखा। स्वामी जी का ये प्रस्ताव निवेदिता को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो सोचती थी कि इस तरह के केंद्र स्थापन से लड़कियों की प्रगति और विकास के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। उन्हें विभिन्न दिशाओं में प्रगति के क्षेत्र नजर आएंगे और वे प्रगति पथ पर आराम से आगे बढ़ सकेंगी।
3: स्वामी जी की ये कल्पना मुझे बड़ी ही उच्च कोटि की लगी तथा मुझे बहुत ही पसंद आई। मुझे लगता है कि स्वामी जी की ये इच्छा साकार हो सकती है। इन सब घरेलू व्यवसायों से शिक्षा की दृष्टि से भी हमारे कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और ये सब व्यवसाय पूर्ण रूप से स्त्रियों के द्वारा ही संचालित होंगे। ये सोचकर मैं रोमांचित हो उठती हूँ। अवश्य ही हम अपने कार्य की शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर करेंगे। मेरे कार्य के लिए निधि जमा करना अब यही मेरा एकमेव ध्येय है। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए मैं अति उत्सुक हूँ।
0: 20 जून 1899 के दिन स्वामी जी, स्वामी तुरियानंद तथा निवेदिता यूरोप प्रवास के लिए रवाना हुए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: बांदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा का समय अब यहाँ संपन्न होता है। चलते चलते आपको याद दिला दें कि आज शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। वतन का राग कार्यक्रम शाम 6 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज आप सुनेंगे सेठ अमरचंद बांठिया पर केंद्रित कार्यक्रम सुनो कहानी। ये कार्यक्रम शाम 6:30 आप तक पहुंचेगा। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुस्साहस। शाम 7 बजे कला कल्लोरिनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर केंद्रित कार्यक्रम। हमारा विशेष कार्यक्रम होगा शाम 7:30। इसमें आज सुनिएगा निमाड़ी गायन, गायक कलाकार शिव भाई गुप्ता। आजाद हिंद कार्यक्रम में रात 8:30 हम बात करेंगे प्रफुल्ल चंद्र राय की शब्दों के शिल्पकार। ये कार्यक्रम 9 बजे प्रसारित होगा। आज का ये कार्यक्रम नजीर अकबराबादी पर केंद्रित होगा। और रात 9:30 आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। आज इसकी 78वीं कड़ी प्रसारित होगी। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आप बने रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

तीन ताल में ट्रेडिशनल बंदिश बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों ने गाया बहुत पुराने समय से। अब कैसे बने मोरी बात सजनी।

0: भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह को नमस्कार। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
2: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
4: अच्छा?
2: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
4: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
2: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
4: कौन सी?
2: शाम अवध सुबह काशी। यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
4: ये तो ठीक है।
2: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
4: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
2: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
4: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
2: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्वेन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
4: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
2: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
4: बिल्कुल,
2: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
4: कौन से श्लोक?
2: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
4: अच्छा।
2: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
4: क्या?
2: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
4: भाई वाह, क्या बात है।
2: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
4: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
2: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
4: बिल्कुल।
2: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
4: हाँ, गौतम बुद्ध बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था जिसे मृगाड़दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
2: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
4: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित

0: उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
1: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ।
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।

0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपिश कहा गया है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाए, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
1: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियां कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियां।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा? सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है,
1: बिल्कुल,
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट्स के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई, कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, मुझे तो इतना ही पता है, और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान, और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
1: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्ति पीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्ति पीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
1: बिल्कुल।
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
1: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
1: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीरदास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
1: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
0: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
1: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे। सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से, जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: रेडियो आज़ाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
2: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो, या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
2: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सके।
3: आयुष्मान मेधावी हो, अपने अपने आसंदि पर बैठे।
4: जी गुरुजी।
3: बच्चों, गणित की इस कक्षा में आज हम ज्यामिति और बीज गणित पर चर्चा करेंगे।
5: गुरुजी, ये अरेबिक न्यूमेरल्स क्या होते हैं?
3: बेटे, ये नाम पश्चिमी देशों का दिया है। शून्य और एक से नौ तक के अंकों को दशमिक प्रणाली कहते हैं। इन दस अंकों की सहायता से कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। इस दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ये अंक ही पश्चिमी देशों द्वारा अरेबिक न्यूमेरल्स कहे गए हैं।
6: ऐसा क्यों गुरुजी?
3: बेटे, हुआ यूं कि 9वीं शताब्दी में ये अंक अरब पहुंचे। उस समय अरब का एक विद्वान अल ख्वारिज्मी भारत आया और उसने यहां आकर अंक गणित का अध्ययन किया। इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में भी किया था। इन अंकों को अरबी में हिंदसा यानी हिंद से आए कहा जाता है। कहा जाता है अल ख्वारिज्मी की गणित की पुस्तक का अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ और जब ये पुस्तक पश्चिमी देशों में पहुंची तो अरब से पहले ये अंक मिस्र में और फिर उत्तरी अरब से धीरे धीरे पश्चिमी देशों को मिले। पश्चिम ने इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहा, जबकि ना तो इसकी खोज और ना ही इसका विकास अरब में हुआ है।
5: यानी अरेबिक न्यूमरल्स सही मायने में भारतीय न्यूमरल्स हैं?
3: हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज तो सारा विश्व ये मानने लगा है कि अंकों और दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। न केवल अंक गणित बल्कि बीज गणित ज्यामिति त्रिकोणमिति कैलकुलस और वेक्टर गणित आदि गणित की विविध शाखाओं का जन्म और विकास भी भारत में ही हुआ है। आज पूरे विश्व में दशमिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है।
7: यह तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है।
3: निश्चय ही वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था। क्यों ना हम आज वेदकालीन भारत की एक झलक देख लें। चलिए, आज हम आप सभी को महर्षि बोधायन के आश्रम में लिए चलते हैं। वे एक महान गणितज्ञ थे। उनका कालखंड ईसा से 1500 वर्ष पूर्व का माना जाता है।

0: अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। युवराज रोहित
1: जी आचार्य श्री,
0: अभी जिस मंत्र का उच्चार किया गया है वो कहां से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है?
1: आचार्य श्री, यह ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभिक मंत्र है। इसमें ब्रह्म और ब्रह्मांड को पूर्ण मानते हुए कहा गया है कि ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, फिर भी ये पूर्ण ही रहता है। अंत में पूर्ण पूर्ण में लीन हो जाता है, फिर भी पूर्ण ही बचा रहता है।
0: ठीक, इस अद्भुत संकल्पना में ब्रह्म की व्याख्या होती है, पर यह तो इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है, इसका गणितीय अर्थ कौन बताएगा? हाँ आपस्तंभ, तुम बताओ।
2: आचार्य श्री, गणितीय अर्थ में यह मंत्र शून्य की सटीक व्याख्या करता है। हम जानते हैं शून्य में से शून्य घटा दिया जाए तो भी शून्य ही बचता है। इसी तरह शून्य में शून्य जोड़ दिया जाए तो भी शून्य ही रहता है।
0: एकदम सही। शिष्यों, पिछले दिनों आपने योग, वियोग, पूरण, भाग आदि के जो गणितीय प्रश्न हल किए थे उनसे इस मंत्र में कही बातों का सत्यापन सहज ही हो जाता है।
1: आचार्य श्री, आप स्तंभ मुनि बता रहे थे कि आपने एक नए सूत्र की रचना की है जिसमें अनेक नए प्रमेय विकसित किए गए हैं।
0: हाँ वत्स, ये सत्य है। हमने मुनि आपस्तंभ को इन नए प्रमेयों के सत्यापन तथा इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न विकसित करने का कार्य सौंप रखा है। मुनि आपस्तंभ, आपके कार्य की प्रगति क्या है?
2: आचार्य श्री, कार्य की प्रगति काफी संतोषप्रद है। प्रमेयों के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी प्रमेय सत्यापन के विविध प्रयोगों में सत्य सिद्ध हुए हैं। अभ्यास प्रश्न का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे।
0: ठीक, हम आश्वस्त हुए। यूं तो हम प्रत्येक प्रमेय का स्वयं सत्यापन कर चुके थे, पर किसी भी प्रमेय की सफलता और उपयोगिता की कसौटी ये तथ्य है कि वो विविध प्रायोगिक परिस्थितियों में सत्य सिद्ध हो।
1: आचार्य श्री, शुल्ब सूत्र की प्रमुख विशेषता के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही कृपया बताएं इसकी उपयोगिता क्या होगी?
0: वत्स, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। किसी भी अनुसंधान का महत्व उसके संभावित उपयोग पर ही निर्भर करता है। अनुसंधान केवल अनुसंधान के लिए नहीं होना चाहिए। अनुपयोगी अनुसंधान समय और शक्ति का अपव्यय ही कहलाएगा।
2: प्रिय मित्र, आचार्य श्री का ये शुल्ब सूत्र ग्रंथ गणित का एक बहुमूल्य ग्रंथ माना जाएगा। गणित के इस विलक्षण ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजे गए हैं। इनमें दिए गए प्रमेय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
0: और वत्स, जहां तक इस ग्रंथ की उपयोगिता का प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रमेयों के ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग करके यज्ञ की वेदियों, मंदिरों तथा भवनों का निर्माण पर्याप्त सुगम हो जाएगा। यज्ञ वेदी चाहे उड़ते पक्षी के आकार की हो या चतुष्कोणी, इनका निर्माण शुल्ब सूत्र में वर्णित ज्यामितीय सिद्धांतों के आधार पर शास्त्रोक्त बनाया जा सकता है। वैसे ग्रंथ की उपयोगिता तो तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम लोग इसका पठन पाठन कर इस पर मनन करोगे, इसमें दिए प्रमेयों के अनुप्रयोगों पर कार्य करोगे।
2: उदाहरण के लिए शुल्ब सूत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय कहता है, दीर्घ चतुरस्याश्रया रज्जुः पार्श्वमानि त्रयकमानि यत् पृथक् भूते कुरुतस्त दुभ्यम करोति। अर्थात आयत के कर्ण यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, आयत की लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर होता है।
1: आपके कहने का अर्थ तो यह हुआ कि किसी आयत का कर्ण क्षेत्रफल में उतना ही होता है जितना उसकी लंबाई और चौड़ाई का होता है।
2: हाँ, मित्रों, इसे हम यूं समझ सकते हैं कि यदि किसी आयत आ बा सा दा आयत का कर्ण बादा और लंबाई आ बा और चौड़ाई आ दा हो तो बादा वर्ग दो बराबर आबा वर्ग दो धन आदा वर्ग दो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है जो भवन या मंदिर के निर्माण में बहुत अधिक सहायक हो सकता है।
0: ऐसे ही अगले दो प्रमेय हैं। पहला प्रमेय कहता है आयत का कर्ण आयत का सम द्विभाजन करता है, जबकि दूसरा प्रमेय कहता है कि सम चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। इन प्रमेयों का सत्यापन किसी आयताकार या समचतुर्भुजी सभा भवन के फर्श पर आसानी से किया जा सकता है।
2: इसी तरह शुल्ब सूत्र में वे विधियां भी दी गई हैं, जिनके द्वारा आप एक त्रिकोण के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वर्ग बना सकते हैं या किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वर्ग के दो गुने या तीन गुने क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं या वर्ग के एक तिहाई क्षेत्रफल का भी वृत्त बना सकते हैं। आप लोग सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि शुल्ब सूत्र में दिए गए प्रमेय और ये अनुप्रयोग कितने अभिनव और कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: निश्चय ही शुल्ब सूत्र में दिए गए ये सभी अनुसंधान एकदम अभिनव और महत्वपूर्ण है। अपने देश में ही नहीं, संसार के दूसरे देशों के लिए भी ये एकदम नूतन और अद्भुत जानकारी देने वाले होंगे।
2: इतनी ही अभिनव और महत्वपूर्ण है शुल्ब सूत्र में वर्णित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विभिन्न श्रेणियां। ऐसे ही शुल्ब सूत्र में वर्णित क्रमचय और संचय के सूत्र हैं। विश्व में ये भारत के गणित के क्षेत्र में दी गई अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। एक और अद्भुत देन शुल्ब सूत्र की रूट दो और रूट तीन जैसी संख्याओं के मान निकालने की विधियां हैं।
0: शुल्ब सूत्र पर तो चर्चा चलती रहेगी, पर अब मध्यान्ह भोजन का समय हो गया है, सो हमें ये चर्चा यहीं रोककर भोजन कक्ष की ओर चलना होगा।

0: मुनिवर, आज आचार्य श्री को नदी तट से लौटने में विलंब हो गया है।
1: लगता है नदी तट पर उनकी भेंट किसी सुधी व्यक्ति से हो गई है, अन्यथा उनका दैनिक कार्यक्रम निश्चित रहता है। अलस भोर, प्रथम पहर में उठना, दैनिक कर्म से निवृत्त हो नदी में जाकर स्नान करना, फिर संध्या वंदन कर ध्यानस्थ बैठना। आचार्य श्री हमेशा अपने शिष्यों से कहते हैं, ऋषि के लिए सुयोग्य, तेजस्वी, मंत्र दृष्टवा, वर्चस्वी होना आवश्यक है। इसके लिए ध्यान और मंत्रों की साधना परम आवश्यक है।
0: मुनिश्री, कई बार आश्चर्य होता है कि आचार्य श्री मंत्रों से गणितीय अवधारणाएं किस तरह विकसित कर लेते हैं।
1: ये अंततः प्रकृति के कारण संभव हो पाता है, जो साधना से प्राप्त होती है। आचार्य श्री कहते हैं, बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तर्क है, पर तर्क द्वंद्व उत्पन्न करता है, किंतु यदि बुद्धि को परिष्कृत और परिमार्जित करके प्रखर बना दिया जाए तो उसकी सीमा विस्तृत और व्यापक हो जाती है। तब हम चीजों को जैसी है वैसी ही देखना प्रारंभ कर देते हैं, यानी हमें सत्य का साक्षात्कार होने लगता है।
0: यह संकल्पना काफी रोचक है, इसे मुझे ठीक से समझना होगा। आचार्य श्री ने जब यह बात कही थी तब मेरा ध्यान थोड़ा भटका हुआ था, सो मैं इसे आत्मसात नहीं कर पाया था।
1: आचार्य श्री की संकल्पना को इस तरह समझा जा सकता है, जब बुद्धि परिष्कृत होती है तो उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है, धारणा शक्ति बढ़ने से मेधा प्रखर हो जाती है, और जब मेधा प्रखर या परिष्कृत होती है तो प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा कहते हैं प्रकाशित बुद्धि को। प्रज्ञा की स्थिति में संवेदना इतनी सघन होती जाती है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ होता जाता है। हमारे ऋषि महर्षि बुद्धि से प्रज्ञा तक की यात्रा के विज्ञान में पारंगत हैं।
0: लीजिए, आचार्य श्री आ गए।
2: प्रणाम आचार्य श्री।
3: आयुष्मान, यशस्वी भव।
1: नदी तट पर किससे भेंट हो गई थी आपकी?
3: वत्स, तुम्हारा अनुमान सही है, नित्य क्रम से हमें थोड़ा विलंब हो गया ना। नदी तट पर आचार्य मैत्रियन से भेंट हो गई। काफी समय पश्चात उनसे भेंट हुई थी, सो चर्चा में समय का पता ही नहीं चला। उन्होंने शून्य के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। वे बोले, वैदिक पदाक्रम में शून्य का अर्थ प्रायः आकाश या रिक्त स्थान अथवा वायुमंडल जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यद्यपि गणितीय अर्थ में शून्य एक वैदिक शब्द नहीं है, किंतु दार्शनिक भाव में शून्य की सुंदर अभिव्यक्ति कठोपनिषद में मिलती है। जरा देखें, ये श्लोक कितना अद्भुत है। यथा सर्वे प्रमुच्यते कामायस्य हृदय स्थितः अथ मर्त्यो अमृते भवत्यत्र ब्रह्मा समुष्णुते। अर्थात जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब मर्त्य अमर होकर अनंत अर्थात ब्रह्म के समान रूप प्राप्त कर लेता है। वे आगे बोलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में शून्य और अनंत के बीच इस सीमांत संबंध को परिभाषित करते हुए जीव अथवा आत्मा की परिकल्पना दी गई है। संदर्भित श्लोक है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेह स चानंताय कल्पते। इसका अर्थ है, बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करने पर जीव का अस्तित्व इस बिंदु पर भी उपस्थित है जिसकी अनंत के रूप में परिकल्पना की जाती है। प्रिय आपस्तंभ, मैं इन दोनों श्लोकों को गणित के प्रमेयों के रूप में रूपांतरित करने का विचार बना रहा हूं।
1: ये तो अद्भुत खोज होगी आचार्य श्री।
3: निश्चय ही। लो, मैं फिर विचार में खो गया। ध्यान सत्र का समय हो गया है, चलो सीधे ध्यान कक्ष में चलते हैं।
1: सभी लोग ध्यान कक्ष में एकत्रित हो गए होंगे, संभवतः हमारी ही प्रतीक्षा हो रही होगी। चलिए। ओम ओम।

0: युवराज रोहित, लगता है तुम्हारा मन कुछ उद्विग्न है। मैं देख रहा हूं, यद्यपि हम वन में लकड़ियां एकत्रित करने के कार्य में संलग्न हैं, पर तुम्हारा ध्यान यहां नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात है मैं लकड़ियों का एक गट्ठर आश्रम भिजवा चुका हूं?
1: आप सही कह रहे हैं मुनिश्री, मेरा ध्यान भटक गया था। कई बार ऐसा हो जाता है।
0: पर ऐसा क्यों? क्या कोई समस्या है या तुम्हें अपने घर की याद सता रही है?
1: नहीं मुनिश्री, घर की याद सताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ का वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण और आत्मीय है कि जो भी यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है। कल गुरु माँ ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था।
2: मैं देख रही हूँ तुम कुछ उद्विग्न हो। आजकल भोजन भी तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। क्या घर की याद सता रही है या यहाँ तुम्हें कोई कष्ट है?
1: कैसी बात कर रही हैं गुरु माता? यहाँ आपका व्यवहार इतना स्नेहिल, इतना ममतामय है कि घर की याद तो आ ही नहीं सकती। आचार्य श्री की पितृतुल्य निगरानी में किसी को भी कोई भी कष्ट हो ही कैसे सकता है?
2: मुझे लगा शायद तुम्हें यहाँ का भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है, सो मैंने तुम लोगों के लिए मोदक और पकवान बनाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे।
1: आप निरर्थक ही चिंता कर रही हैं गुरु माता, यहाँ का भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट और रुचिकर है। मेरी उद्विग्नता को आप अन्यथा न लें।
2: तो क्या आचार्य श्री की डांट से व्यथित हो? कल संध्या में उन्होंने संभवतः तुम्हें डांटते हुए कहा था, रोहित देख रहे हो ना, गोधुली हो गई है। तुम्हें दीप मंजूषा को तैयार कर प्रज्वलित करने को कहा था ना, तुम कर क्या रहे हो?
1: नहीं गुरुमा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल संध्या में हम लोग कंदूक के खेल में इतने व्यस्त हो गए थे कि दीप प्रज्वलित करने का ध्यान ही नहीं रहा। हम में से किसी ने भी आचार्य श्री के कहे को अन्यथा नहीं लिया।
0: कोई बात तो है जो तुम हमसे छिपा रहे हो।
1: सच कहूं मुनिश्री, तो मैं चिंतित हूं।
0: चिंतित हो? किस लिए?
1: वो क्या है, आचार्य श्री ने मुझे आश्रम के आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर लगे आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने को कहा है।
0: तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है?
1: चिंतित होने की ही तो बात है मुनिश्री। मैंने गणना करके पता लगाया, अपने आश्रम के आम्र कुंज में 1002 आम्र वृक्ष हैं। इन सब पर लगे आम्र फलों की गणना करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा।
0: रोहित, तुम्हें स्मरण होगा आचार्य श्री ने एक दिन पूर्व अनुमानित संख्या ज्ञात करने की विधि की चर्चा की थी।
1: हाँ, मुझे स्मरण है।
0: उसके पश्चात ही आचार्य श्री ने तुम्हें आश्रम के आम्र कुंज की वृक्षों पर उपस्थित आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने का अभ्यास दिया होगा।
1: उसके बाद ही मुझे यह संख्या ज्ञात करने को कहा था। मैं तभी से चिंतित हूँ, कैसे क्या करूँ?
0: देखो प्रिय, तुमने आम्र कुंज में उपस्थित आम्र वृक्षों की संख्या गणना तो कर ही ली है। अब तुम अलग अलग आकार के 5 वृक्ष चिन्हित कर लो। इसके बाद इन चिन्हित वृक्षों में से प्रत्येक वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की संख्या ज्ञात करो। इस तरह तुम्हें इन 5 वृक्षों पर उपस्थित फलों की 5 संख्याएं प्राप्त होंगी। इन संख्याओं का योग करके प्राप्त संख्या में 5 का भाग देने पर तुम्हें 1 वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की औसत संख्या अर्थात अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस औसत संख्या को आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों की कुल संख्या से गुणा करने पर आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर आम्र फलों की अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी।
1: अरे वाह मुनिवर, आपने तो मेरी समस्या चुटकियों में हल कर दी।
0: अब से गांठ बांध लो। चिंतित रहने की जगह समस्या पर आपस में चर्चा करके हल ढूंढा जा सकता है।
1: इस सीख को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे हाँ, सुना है आप आचार्य श्री के साथ विभिन्न आश्रमों के आचार्यों के समागम में भाग लेने जा रहे हैं।
0: हाँ, ये सही है, ये आचार्य श्री का मुझ पर अनुग्रह और स्नेह ही है जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा।
1: आचार्य श्री का आप पर विश्वास अनुचित नहीं है मुनिवर, आप उनके प्रिय और सबसे योग्य शिष्य जो हैं।
0: हाँ, अब ये बातें छोड़ो, हमें जल्द ही आश्रम पहुंच जाना चाहिए, चलो।
1: हाँ हाँ, एक मिनट, मैं लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता हूँ, चलिए।

0: वो आ रहे हैं अपस्तम मुनि।
1: हाँ, उनसे ही ज्ञात होगा आचार्यों की सभा में क्या हुआ।
2: पहले उन्हें बधाई तो दो। आचार्यों की सभा में आचार्य बोधायन के साथ भाग लेना महान उपलब्धि है।
0: मुनिश्री बधाई।
2: अत्यंत हर्षित हैं।
3: प्रणाम मुनिश्री, बताएं आचार्यों की सभा में भाग लेना कैसा अनुभव था।
4: बधाई के लिए हार्दिक धन्यवाद। ये सब आप सभी की शुभकामनाओं और स्नेह के कारण ही संभव हुआ। जहाँ तक महासभा में भाग लेने के अनुभव की बात है तो ये निश्चय ही अद्भुत था, अनिर्वचनीय।
3: वहाँ सभा में क्या हुआ मुनिश्री।
4: सभा क्या, महासभा थी वो। अनेक आचार्यों का समागम था। बहुत कुछ हुआ था वहाँ। अनेक विषयों पर, शास्त्रों पर चर्चाएं हुई, शास्त्रार्थ हुए। मूल बात यह है कि आचार्य बोधायन के शुल्भ सूत्र पर विशेष चर्चा हुई। सभी ने आचार्य श्री की खोजों उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। शुल्भ सूत्र को गणित के इतिहास में मील का पत्थर घोषित किया गया। कहा गया कि ये कालजयी ग्रंथ है जिसकी चर्चा शताब्दियों तक होती रहेगी।
5: वाह वाह वाह वाह, बधाई श्री।
6: बधाई बधाई।
3: और कोई विशेष घटना।
4: हाँ, घटनाएं तो अनेक हैं, पर एक ज्ञातव्य है। वहां आचार्य श्री के मार्गदर्शन में 1000 ईंटों की एक उड़ते पक्षी के आकार की एक यज्ञ वेदी बनाई गई। ये वेदी वहां विद्वानों, विशेषकर ज्यामिति शास्त्रियों के लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि 10 प्रकार की ईंटों से बनी वेदी की सतह यजमान के 7.5 गुना थी और ईंटों का माप यजमान के 5वें हिस्से के बराबर था।
5: बधाई हो।
4: कृपया शांत हो, शांत हो। आचार्य श्री पधार रहे हैं, उन्हें धमाल कतई पसंद नहीं है। चलिए चलिए, सभा गृह में चलिए, हमें वहां उपस्थित होना है। आइए आइए आइए आइए आइए आइए।

आर्कमिडीज और अपोलोनियस की मेधा में दार्शनिक प्रणाली की बात नहीं आई। ऐसे ही सर मोनियर विलियम्स के विचार थे कि शताब्दियों पहले हिंदुओं ने ज्यामिति और बीजगणित के क्षेत्र में जो आविष्कार किए वे अद्भुत हैं।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, जिसे पेश करेंगे नीलाद्रि कुमार, और उसके बाद मांगड़ियार गायन की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसे पेश करेंगे गाजी खां और उनके साथी कलाकार। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं नीलाद्रि कुमार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सितार वादन, जिसे पेश कर रहे थे नीलाद्री कुमार। और अब सुनिए गाजी खां और साथी कलाकारों का मांगड़ियार गायन।

ये अलगोजा है, ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में बजाते हैं, इसको डबल फ्लूट कहते हैं। ये शीशम की लकड़ी का है। ये भनु खान आपको अलगोजा सुना रहे हैं धुन।

तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मांगड़ियार गायन, जिसे पेश कर रहे थे गाजी खां और उनके साथी कलाकार। अब दीजिए कार्यक्रम भारत भारती से इजाजत अपने दोस्त दानिश को। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है।
1: आते हैं। आ वामृताय केशिनीर नूषत मित्र यत्र वरुण गातु मर्चथः अवत्मना स्रजतम पिन्वतम धियो युवम विप्रस्य मन्मना भिरज्यथः। हे मित्र और वरुण देवो, जहां आपकी प्रार्थनाएं गाई जाती हैं उस प्रदेश में अग्नि की ज्वालाएं यज्ञीय कार्य के लिए आप दोनों का सहयोग करती हैं। आप हमारी बौद्धिक क्षमता को पुष्ट करके सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। आप दोनों ही ज्ञान संपन्न विद्वानों के अधिपति हैं। यो वाम यज्ञैहि शशमानो ह दाशति कविर होता यजति मन्म साधनः उपाह तम गच्छथो वीथो अध्वर मच्छा गिरह सुमतिम गंत मस्मयु। हे मित्र और वरुण देवों, जो विद्वान याजक प्रार्थनाएं करते हुए आप दोनों को आहुतियां प्रदान करते हैं, उन मनुष्यों के समीप जाकर आप यज्ञीय कर्मों की अभिलाषा करते हैं। अतएव आप दोनों हमारी ओर उन्मुख होकर हमारे स्तोत्रों और श्रेष्ठ भावनाओं को स्वीकार करें। युवाम यज्ञैः प्रथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु भरन्ति वाम मन्मना संयता गिरो दृप्यता मनसा रेव दाशाथे। हे सत्य संपन्न मित्रा वरुण देव, इंद्रियों में मन जिस प्रकार सर्वोत्तम है, उसी प्रकार देवताओं में सर्वोत्तम आप दोनों को याजकगण दुग्ध घृतादि की आहुतियों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उन्हें ऐश्वर्य संपदा प्रदान करते हैं। रेवद्वयो दधाथे रेव दाशाथे नरा माया भिरित ऊति माहिनम न वाम द्यावो हभिर्नोत

0: उपलब्ध नहीं कर सके।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 151 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए ये भक्ति रचना।

धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है और कुल की रक्षा सदाचरण से होती है।

श्रोताओं, भक्ति ही वही शक्ति है जो टूटे मन को सहारा देती है, भटके हुए को राह दिखाती है और निराश जीवन में आशा का दीप जलाती है।

श्रोताओं, इसी श्लोक के साथ हमारा आज का ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सेठ अमरचंद बाठिया पर।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक उथल पुथल कुछ अलग रंग जमाए हुए थी। अधिकांश बड़े राजा और जमींदार अंग्रेजों से मैत्री बनाए हुए थे। अंग्रेजों को अपने दरबार में बड़े पद भी दे रखे थे। ये सैन्य सलाहकार, सेनापति और विशेष सलाहकार भी थे। अपने खर्चे पूरा करने के लिए राजाओं द्वारा गरीब जनता पर भारी कर लगाए जाते थे। गांवों से संपत्ति लूटी जाती थी या फिर उनसे वसूली जाती थी। इस मनमानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। अंग्रेज सरकार अपने खर्चे पूरे करने, युद्ध के लिए पैसा जुटाने का काम इन राजाओं को धमका कर पूरा करती थी। युद्ध के लिए कर्ज भी राजाओं और नवाबों से लिया जाता था। पर इस भीषण संतरास के बीच ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए कि समाज के संपन्न वर्ग के लोगों ने, छोटे छोटे जमींदारों ने अपनी सेना और धन खुशी खुशी 1857 के समय युद्धरत क्रांतिकारी सेना नायकों को सौंपा। ऐसे ही एक भामा शाह थे दिल्ली के रामजी दास गुड़वाला और उनसे भी आगे ग्वालियर के अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया के पूर्वज बांठिया गोत्र के आदि पुरुष श्री जगदेव पवार ने जैनाचार्य भावदेव सूरी से प्रबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार किया था। कुछ इतिहासकार विक्रम की 12वीं शताब्दी में रणथंभौर के राजा लाल सिंह पवार के पुत्रों द्वारा जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरी से प्रतिबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार कर लेने के उनके ज्येष्ठ पुत्र बंठ से बांठिया गोत्र की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ इतिहासकार माधव देव द्वारा दानवीरता की अनुकरणीय परंपरा का श्री गणेश करने के कारण बांटिया अर्थात बांठिया उपनाम की प्रसिद्धि मानते हैं। स्पष्ट है कि अमरचंद जी को दानवीरता का गुण जन्मजात ही मिला था। अमरचंद बांठिया का परिवार व्यापार हेतु सन 1835 में फलौदी में भूमि से प्रकट हुई चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा के चल समारोह में अनेक संघपतियों के परिवार के साथ बीकानेर से ग्वालियर आया और यहीं बस गया। प्रतिमा की प्रतिष्ठा ग्वालियर के हृदय स्थल सर्राफा बाजार के शिखरबंद जिनालय में संवत 1893 में हुई थी। अमरचंद के दादा का नाम खुशाल चंद और पिता का नाम अबीर चंद था। अमरचंद अपने 7 भाइयों में सबसे छोटे थे। अमरचंद बांठिया में धर्मनिष्ठा, दानशीलता, सेवा भावना, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता आदि गुण जन्मजात थे। यही कारण था कि सिंधिया राज्य के पोद्दार श्री वृद्धिचंद संचेती ने अमरचंद को ग्वालियर राज्य के प्रधान राजकोष गंगाजली के कोषालय पर सदर मुनीम बनवा दिया। उस समय सिंधिया नरेश मोती वाले राजा के नाम से जाने जाते थे। गंगाजली में अटूट धन संचय था, जिसका अनुमान स्वयं सिंधिया नरेशों को भी नहीं था। विपुल धनराशि से भरे इस खजाने पर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल का कड़ा पहरा रहा करता था। कहा जाता है कि उन दिनों पीढ़ियों से ये आन चली आ रही थी कि न तो कोई राजा अपने राजकोष की संपत्ति को देख ही सकता था और न ही उसमें से कुछ निकाल ही सकता था। इसलिए गंगाजली की सदैव वृद्धि होती रहती थी। इस अकूत धन संचय को कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। अमरचंद बांठिया इस खजाने के रक्षक ही नहीं, ज्ञाता भी थे। वे चाहते तो अपने लिए मनचाही रत्न राशियां निकालकर कभी भी धन कुबेर बन सकते थे। पर बांठिया जी तो धर्म के पक्के अनुयायी थे, जो राजकोष का एक भी पैसा अपने उपयोग में लाना घोर पाप समझते थे। ईमान और कर्तव्य ही उनके लिए सर्वोपरि था।

बांटिया जी की दैनिक चर्या बड़ी ही नियमित थी। प्रातः उठकर जिनेन्द्र देव की अर्चना और यदि कोई मुनि या साधक विराजमान हो तो उनके उपदेश सुनना, समय पर कोषालय जाना, सूर्यास्त से पूर्व भोजन और रात्रि 9 बजे तक शयन उनके यांत्रिक जीवन के अंग थे। गंगा जली के खजांची पद को सुशोभित करने के कारण बांटिया जी का आत्मीय परिचय बड़े बड़े राज्याधिकारियों से हो जाना स्वाभाविक ही था। सेना के अनेक अधिकारियों का आवागमन कोषालय में प्रायः होता रहता था। बांटिया जी के सरल स्वभाव और सादगी ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। चर्चा प्रचर्चा में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों की भी चर्चा अक्सर होती थी। एक दिन एक सेनाधिकारी ने कहा, आपको भी माँ को दास्ता से मुक्त कराने के लिए मुझे लगता है कि हथियार उठा लेना चाहिए। बांटिया जी ने कहा, भाई अपनी शारीरिक विषमताओं के कारण मैं हथियार तो नहीं उठा सकता, पर समय आने पर ऐसा काम करूंगा जिससे क्रांति के पुजारियों को शक्ति मिलेगी और उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। जैसा कि सबको मालूम ही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जहां कहीं भी युद्ध छिड़ता था, वे भारतीय सैनिकों को ही सबसे पहले युद्ध की आग में झोंक देते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने अमरचंद बांटिया से चर्चा में 1857 के पूर्व की एक घटना सुनाते हुए कहा, 700 बंगाली सैनिकों की एक रेजिमेंट को अंग्रेज अफसरों ने इसलिए गोलियों

तड़पने लगा था। उधर मुनिराज के प्रवचन में भी उन्होंने एक दिन सुना कि जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें, उसी का जन्म सार्थक है, वो मरणोपरांत अमर रह सकता है। ये सुनकर बांठिया जी का निश्चय बिल्कुल दृढ़ हो गया। उन्होंने तय किया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे जो भी समर्पित करना पड़े मैं करूंगा, और ये अवसर शीघ्र ही सामने भी आ गया।

1857 की क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई, उनके सेना नायक राव साहेब और तात्या टोपे आदि क्रांतिवीर ग्वालियर के रणक्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध

डटे हुए थे, परंतु रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों को कई महीने से वेतन नहीं मिला था और ना ही राशन पानी का समुचित प्रबंध ही हो सका था। तब बांटिया जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्रांतिकारियों की मदद की। 2 जून 1858 को राव साहब ने अमरचंद बांटिया से कहा कि उन्हें सैनिकों का वेतन आदि भुगतान करना है, क्या वे इसमें सहयोग करेंगे। तत्कालीन परिस्थितियों में राजकीय कोषागार के अध्यक्ष अमरचंद बांटिया का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई की क्रांतिकारी सेनाओं के सहायतार्थ एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया जिसका सीधा सा अर्थ उनके अपने जीवन की आहुति से था। अमरचंद बांटिया ने राव साहब के साथ स्वेच्छापूर्वक सहयोग किया तथा राव साहब प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्वालियर के राजकीय कोषागार से समूची धनराशि प्राप्त करने में सफल हो सके। 5 जून 1858 के दिन राव साहब राजमहल गए तथा अमरचंद बांटिया से गंगाजली कोष की चाबियां लेकर उनका दृश्यावलोकन किया। तत्पश्चात दूसरे दिन जब राव साहब बड़े सवेरे ही राजमहल पहुंचे तो अमरचंद बांटिया उनकी आगवानी के लिए मौजूद थे। गंगाजली कोष से धनराशि लेकर क्रांतिकारी सैनिकों को 5-5 माह का वेतन वितरित किया गया। महारानी बैजाबाई की सेनाओं के संदर्भ में भी एक ऐसा ही विवरण मिलता है। जब नरबर में बैजाबाई की फौज संकट की स्थिति में थी तब उनके फौजी भी ग्वालियर आकर अपने अपने घोड़े तथा 5 महीने की पगार लेकर लौटे थे। इस प्रकार बांटिया जी के सहयोग से संकटग्रस्त फौजों ने राहत की सांस ली। अमरचंद बांटिया से प्राप्त धनराशि से बाकी सैनिकों को भी उनका वेतन दे दिया गया। ये स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति के समय अगर अमरचंद बांटिया ने क्रांतिवीरों की इस प्रकार आर्थिक सहायता न की होती तो उन वीरों के सामने कैसी स्थिति उत्पन्न होती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्रांतिकारी सेनाओं को काफी समय से वेतन नहीं मिला था, उनके राशन पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इस कारण निश्चय ही क्रांतिकारियों के संघर्ष में क्षमता, साहस और उत्साह की कमी आती और लक्ष्मीबाई, राव साहब और तात्या टोपे को संघर्ष जारी रखना कठिन पड़ जाता। यद्यपि बांटिया जी के साहसिक निर्णय के पीछे उनकी अदम्य देशभक्ति की भावना छुपी हुई थी, लेकिन अंग्रेजी शब्दकोश में तो इसका अर्थ था देशद्रोह या राजद्रोह, और इसका प्रतिफल था सजाए मौत। अमरचंद बांटिया से प्राप्त इस सहायता से क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हो गए थे। उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। बौखलाए हुए ह्यूरोज ने चारों ओर से ग्वालियर पर आक्रमण की योजना बनाई। योजना के अनुसार ह्यूरोज ने 16 जून को मोरार छावनी पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया। 17 जून को ब्रिगेडियर स्मिथ से राव साहेब और तात्या टोपे का कड़ा मुकाबला हुआ। लक्ष्मीबाई इस समय आगरा की तरफ से आए सैनिकों से मोर्चा ले रही थीं। दूसरे दिन स्मिथ ने पूरी तैयारी से फिर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी 2 सहायक सहेलियों के साथ पुरुषों की वेशभूषा में आकर सेना की कमान संभाली। ये युद्ध निर्णायक हुआ जिसमें रानी को संगीन और गोली तथा तलवार के घाव लगे। उनकी सहेली की भी गोली से मृत्यु हो गई। हालांकि आक्रमणकर्ताओं को भी रानी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, किंतु घावों से वो मूर्छित हो गई थीं। साथियों द्वारा उन्हें पास ही बाबा गंगादास के बगीचे में ले जाया गया जहां वे वीर गति को प्राप्त हुईं। लक्ष्मीबाई के इस ऐतिहासिक बलिदान के मात्र 4 दिन बाद ही 22 जून 1858 को ग्वालियर में ही राजद्रोह के अपराध में न्याय का ढोंग रचा गया। न्याय के इस नाटक में अमरचंद बांटिया से पूछा गया कि आपने किस दबाव में राजकीय कोष गंगाजली की धनराशि क्रांतिकारियों को सौंप दी। अमरचंद बांटिया ने उत्तर दिया कि जिस समय ये धनराशि मैंने रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब के हवाले की उस समय यहाँ उनका अधिकार था, वे ही मेरे स्वामी और इस कोष के अधिकारी थे, इसलिए देश और स्वामी भक्ति की भावना के वशीभूत हो मैंने विवेकपूर्ण निर्णय ही लिया। वस्तुतः गंगाजली कोष का धन जनता का ही था और जनक्रांति में इसका इससे अच्छा क्या उपयोग हो सकता था। मातृभूमि के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। उनके इस बयान के बाद लश्कर के एक भीड़ भरे सर्राफा बाजार में
22 जून 1858 को ब्रिगेडियर नेपियर द्वारा नीम के पेड़ से लटकाकर अमरचंद बाठिया को फांसी की सजा दे दी गई। भारत माता के ऐसे महान सपूत को हमारा शत शत नमन।